मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कहते हैं यह शरीर 9 दरवाजों वाला घर है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और ऊपर नीचे 2 और। ये 5 तत्वों से बना मिट्टी, पानी, हवा और आकाश का एक पुतला है। ये शरीर बिना पानी की बेल की तरह है। 24 घंटे ये दुनिया में भटकता रहता है, पर इसका कोई भरोसा नहीं। पानी मिलना बंद तो बेल मुरझा जाएगी। 9 दरवाजों देह के, 5 तत्व का खेल, 8 पहर जगत फिरे बिन पानी की बेल। कबीरदास ने भी इस बात का प्रमाण दिया है। और ये नश्वर तन कुछ समय के लिए इस संसार में अपना अभिनय करता है और इस अभिनय की पूर्ति के बाद जो लक्ष्य निर्धारित होता है ईश्वर के द्वारा, वो हमारे कर्म है। हम अगर अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जाने के बाद इस दुनिया के लिए कुछ याद रह जाती है। तो आइए प्रातःकाल की शुरुआत इस भक्ति रचना के साथ, जिसमें संदेश है कि इस तन का हम पूरा उपयोग करें, अपने अनंतिम लक्ष्य को कभी न भूलें और ईश्वर के स्मरण को सदैव याद रखें।

हमारे पास जो जिंदगी अभी बची है वो भगवान ने दी है ताकि हम अधूरे काम पूरे कर सकें। ईश्वर ने हमें इस संसार में किसी लक्ष्य के साथ दिया है और इस जीवन का परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को पहचानना, खुद को पहचानना और परमात्मा स्वरूप में अपना अंश ढूंढना। जब जिंदगी में कोई भी संकट आता है तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। यदि हमें किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो समझ लेना।

कि भगवान उत्तर दे रहे हैं। और कभी आप ईश्वर के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ प्रवेश करने के पहले हमें अपना अहंकार, घमंड सब कुछ बाहर ही छोड़कर जाना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में ईश्वर की कृपा मिलती है। और ईश्वर की कृपा वो अमृत है जो हमें खुद को खाली करने के बाद ही प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। तो पूजा करने के पहले भरोसा करना सीखिए और बोलने के पहले सुनना सीखिए।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: कुछ और भक्ति रचनाओं के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्रोताओं, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद यह

मनुष्य तन अगर मिला है तो ये भगवान की अनमोल देन है और इस अनमोल देन का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। और इसका सदुपयोग कैसे करें, इसकी राह हमें दिखाते हैं हमारे गुरु। जी हाँ, आध्यात्मिक गुरु, वो गुरु जो अंधेरा दूर करने वाला दीपक है। माँ हमें जन्म देती है पर गुरु हमें जीना सिखाता है। किताब ज्ञान देती है पर गुरु समझ देता है। गुरु के बिना जीवन उस नाव की तरह है जिसका पतवार नहीं, जो गिरते को उठाता है, भटके को राह दिखाता है और जो असाधारण बना करके हमें साधारण से ऊपर उठाता है। इसीलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए।

इस भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना समाप्त होता है। आज जिन कलाकारों को आपने इस कार्यक्रम में सुना वो हैं अनुराधा पौडवाल, अनूप जरोटा और पंडित छन्नूलाल मिश्र। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में लिए चलते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
2: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
4: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
2: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
5: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर.एन. रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे

0: Srimati Agnimitra Paul of the government of West Bengal is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
1: Rajpal Sri R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान

रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं योग मानव जीवन के का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away.

Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में

0: इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को

0: सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन। जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, हम सब और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर. And he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road. And we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
1: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
1: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो संस्था नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
1: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
1: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
4: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर

0: कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
1: जी।
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी।

0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
2: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला को योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers.

0: who have come here, and he's interacting with them, and he's just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed, a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं. और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए. और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं. एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है. यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं. और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है.
1: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं. और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है. और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी.
0: यस एब्सोल्युटली. एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी. और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं. और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत कर करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला।

0: आसन है ये
1: जी। और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: Now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा। तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है
1: जी।
0: तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
1: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
1: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।

0: जी गुरु मुनेश सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
1: जरूर जरूर, एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम

0: हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी।
0: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं, जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
2: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं, उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक, कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी।
2: और पवन मुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
1: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
0: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
1: जी।
0: हमारी चित्त की वृत्तियाँ अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियाँ ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं हैं, आपकी वृत्तियाँ ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों

0: को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ख़ास करके मेडिटेशन और ख़ास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
1: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इन्हीलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधन, योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामिन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
2: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है,

0: निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
1: जी।
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमिडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी इस पूरी दुनिया में है, आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीज़ें, मेरी खुद की लाइफ बताऊँ कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था, और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा, और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है,

0: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
1: शांति
0: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
1: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
0: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
1: और धीरे धीरे
0: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jin mein jahan jahan bharatiya dutawas hain unki or se vishesh ayojan honge aur ab kyunki bahut sare desh duniya ke yog ko apna चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
2: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशन्ड एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
3: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाए। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह

0: जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है
1: जी।
0: आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरे पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं, और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders, the Indian Army personnel, the

0: BP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यालयों में संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा. और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया.
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1000

26 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनः परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयल इंस्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही

0: एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मोज जलडमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तिहान मुनक्किद कराएगी। भारतीय परचम बरदार तीन ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुर्मुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख

0: धक और आईएनएस अग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी आज से पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान मुनक्किद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आब नए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की क्यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क्यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर अहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, ले, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनाकिद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में आवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। बैन अलाक्वामी सतह पर 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन सकाफती ताल्लुकात के लिए भारतीय कौंसिल की मजबूत कोशिशों के जरिए दुनिया भर में तकरीबन 2500 मुकामात पर योग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक़िद हो रही हैं। नील योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے جبلپور میں ریاستی سطح کے یوگ کے عالمی دن کے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یہ تقریب

0: कल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट UG पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम।

प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प।

0: प्राभ्यास के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया। प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश देते हुए प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं लखनऊ स्थित जन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के

0: बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।

0: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी, बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम कल 100% पूरा कर लिया गया। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य संपन्न हुआ। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना भी की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट यूजी पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और उसी के साथ है आज संगीत दिवस, और योग और संगीत का बड़ा ही अद्भुत तालमेल है। अगर हम योग संगीत के साथ करते हैं तो वो हमें

एक नई ऊर्जा देता है, एक नया प्राण देता है। और अगर हम योग के साथ आध्यात्म को जोड़ते हैं और आध्यात्म के साथ मन को पवित्र और शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो हम जुड़ जाते हैं उस परम शक्ति परमात्मा से। ये कार्य करने में संगीत बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, आप महसूस करेंगे। बिल्कुल, पहला गीत हम आपको सुनवा रही हैं हनुमान रिटर्न से, दलेर मेहंदी की आवाज़, सतीश मुक्तर का गीत है और तपस रेलिया का संगीत है। आइए सुनते हैं। इस संगीत की धुन के साथ आप महसूस करेंगे, आंखों को बंद करके अगर आप ध्यान करेंगे तो कितना आनंद आता है और ध्यान कितना गहरा होता है।

0: योग शुरू करने के पहले वार्म अप, और वार्म अप इस धुन के साथ करिए तो आपके शरीर में रक्त का संचार बढ़ेगा, धड़कनें कंट्रोल होंगी और आपको शरीर में ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस होगा।
1: क्या करूं और क्या नहीं, बात किसी से कही।

0: जी हाँ, योग करके तन हल्का और मन दुरुस्त, और अगर हम सांसों पर अभ्यास करें योग के माध्यम से, तो हमें अंदर से पुष्टि मिलती है, अंदर से शक्ति मिलती है। और अगर संगीत के साथ योग करें तो हमें ऊपर उठता हुआ महसूस होता है। योग सांस लेने का तरीका सिखाता है और संगीत सांस में लय भर देता है। जब तन मन योग से जुड़ जाते हैं तो शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न हो जाता है और पूरा जीवन उत्सव बन जाता है। कुछ और सुमधुर गीत लेकर के आएंगे इच छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: सुनो ना।
5: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
7: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
8: आरबीआई कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। तो बात हम कर रहे थे संगीत और योग की, और जब योग संगीत से जुड़ता है तो हमारे अंदर कई तरह के संतुलन पैदा करता है। जैसे अगर हमें ध्यान करना है, ध्यान से अपने शरीर को स्वस्थ दुरुस्त और मन को शांत करना है, तो आप बांसुरी या तानपुरे की धुन पर ध्यान रखिए, आपका मन कभी भी नहीं भटकेगा। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उस समय हल्की धुन की कोई राग आप प्ले कर सकते हैं, आपको थकान का बिल्कुल भी पता ही नहीं लगेगा। और अगर योग शरीर की गांठ खोलता है तो संगीत दिल की गांठें खोलता है। और अगर आपका रोने का मन है योग करते समय, तो बिल्कुल आप ध्यान करते समय रो भी सकते हैं, और इससे आपके शरीर में जितने भी नेगेटिव केमिकल्स बनते हैं वो निकल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान में

आपकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। तो बिल्कुल इसको भी विपरीत ना लें, निगेटिव ना लें, ये भी एक फायदे का सूचक है। तो करते रहे योग, बने रहे निरोग। और अब आइए सुनते हैं एक और गाना जो संगीत को आपके मन से जोड़ेगा। कौन सा गाना? ये गीत हमने लिया है फिल्म संगीत से, सुरेश वाडेकर की आवाज़ और अनुराधा पौडवाल ने आपका साथ दिया है। संतोष आनंद के बोलों को सुरों से सजाया नरेश शर्मा ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे 10:30 पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति, रोजगार परक कोर्सेज, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी पहलों के जरिए उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के समग्र विकास का जरिया बनाया है। बीते 12 वर्षों की इस यात्रा पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। राजकुमार जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: प्रोफेसर मित्तल, आप खुद एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत ही अहम केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी विराजमान हैं, और आपने जो एक लंबा वक्त शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, अपने अनुभव से बताएं कि बीते 12 वर्षों में एनडीए की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक, उत्साही और अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिवर्तन हुए, और मुझे लगता है कि इन सब परिवर्तनों को करने का जो पीछे आधार रहता है वो शिक्षा ही रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बहुत महत्व देते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी प्रगति के रूप में देख सकते हैं, और इसमें शिक्षा नीति में एक ट्रांसफॉर्मेटिव का पोटेंशियल है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया, ये सारे के सारे एक बड़े ही इनोवेटिव, रिफॉर्मेटिव टाइप के कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, और इन सबके पीछे जो आधार है वो शिक्षा नीति ही है। शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आज हम देखते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो। भारत आज विश्व का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोग जो पहले अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर IIT IIM से बाहर जाते थे, अब लोग भारत में ही अनेक तरह की संभावनाएं खुली हैं, उसमें आप काम देख रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है हुआ है। स्वदेशी इंडियनाइजेशन बहुत बड़े स्केल पर, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो या और अन्य क्षेत्र, कृषि वगैरह में, इन सब में भी स्वदेशीकरण बहुत बड़े पैमाने पर और जो नवाचार है वो हुआ है, इसके पीछे भी जो मुझे लगता है कि वो शिक्षा ही आधार के रूप में कार्य करता है।
3: जी प्रोफेसर मित्तल, जैसे कि हम लगातार देखते रहे कि प्रधानमंत्री युवा शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि युवा शक्ति ही है वो आगे लीड करेगी और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। तो शिक्षा नीति की जहां आप बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय के बाद ये परिवर्तन आया और नई शिक्षा नीति लाई गई, कितनी जरूरत थी इसकी?
2: देखिए, भारत, हम सब जानते हैं कि विश्व की जो 20% के करीब लगभग युवा शक्ति वो भारत में रहती है। भारत युवाओं का देश है और पॉपुलेशन डिविडेंड जो एक हमें एक यूनिक सिचुएशन हमें दिखती है, उसका सदुपयोग करना, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को स्किल करें, उसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, उनमें व्यवहारिक ज्ञान दें और उनके लिए अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अपॉर्चुनिटी खोलें। और सरकार आज जो आवश्यकता है, मुझे तो ये लगता है कि जो भारत का विकास है वो उद्यमिता के रास्ते होगा, यानी उनका जॉब सीकिंग बिहेवियर की बजाय जॉब प्रोवाइडर उनका जो बिहेवियर होगा, माइंडसेट, वो बहुत आगे भारत को लेके जाएगा। भारत ऐसा ही देश था जहाँ पर उद्यमशीलता पाई जाती थी और पूरे विश्व का लगभग एक तिहाई जो ट्रेड था, उत्पादन था, वो यहीं से होता था, और बेरोजगारी और ये इस तरह की जो दूसरी समस्याएं थी वो उस समय नहीं दिखती थी। तो आज मुझे लगता है कि बहुत युवाओं को उनका जो पोटेंशियल हमारे पास एक अवेलेबल है, ये विश्व में कहीं और इतनी बड़ी संख्या नहीं है, इसका सदुपयोग करना और इसको सही रास्ते पर, इसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इनके पोटेंशियल को रियलाइज करना, इनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना, ये हम सबके लिए आवश्यक है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी की तरफ

0: जाती है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति ने बिल्कुल नया आयाम दे दिया है शिक्षा को, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें या खेलों की बात करें, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो। तो नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, आपकी विश्वविद्यालय ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं?
0: देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा नीति का एक जो स्तंभ है वो है उद्यमशीलता को प्रेरित करना। उसके लिए हमने अपने विश्वविद्यालय में नव कल्पना के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी खोली है, और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है कि लगभग 25-26 हमारे पास विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया, और वो नए नए आइडिया पे काम कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली वो एक स्टार्टअप कर सकें अपना। हम उसके लिए एक हमारा बोर्ड है, इंडस्ट्री के साथ अपना जुड़ाव हम बढ़ा रहे हैं, और हमारा कोशिश होगा कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा उद्यमशीलता की जो भावना है उनमें भी वो जाए। इसकी तरफ हम नव कल्पना के माध्यम से लगे हुए हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया।
1: जी
0: दूसरा जो कदम महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को आप ध्यान से देखें तो वो ये बात कहती है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय में 12 अभी हॉबी क्लब्स खोले हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, अर्बन गार्डनिंग, खाने पीने का, कुजीन, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंट के ऊपर सेंसिटिविटी, और ऐसे ऐसे कुछ फोटोग्राफी ये खोले हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे को इनमें रुचि लेनी चाहिए अपने स्वभाव और अपनी सोच के मुताबिक। दूसरा, तीसरा, यदि आप देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में 250 एकड़ की उसमें भूमि पर ये एक बहुत हरा भरा कैंपस है जिसमें ग्रीनरी के ऊपर बहुत फोकस है। 1.5 लाख से ज्यादा इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमने पिछले साल ही इसमें रिकॉर्ड किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, एक साथ सबसे ज्यादा प्लांट एक समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए थे, और अब हमारा फोकस यहाँ पर जो फ्रूट बेस्ड प्लांट है वो लगे। हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से एक हर्बल गार्डन भी विकसित किया है। चौथा पॉइंट हम योगा का देते हैं, योगा, मेडिटेशन और उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल के माध्यम से एक हमने उम्मीद नाम से एक प्लेटफॉर्म किया है। उस प्लेटफॉर्म में हमारे पास योगा के टीचर हैं, मेडिटेशन के हैं, आयुर्वेद के टीचर हैं, हॉस्पिटल हमारा है, और भी जो अलग अलग साइकोलॉजी का एक काउंसलर लगा हुआ है। ये सारे के सारे बच्चों में बच्चों की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म है, NCC, NSS, जो विद्यार्थियों के फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और इंटेलेक्चुअल लेवल को सामूहिक रूप से देखते हैं ताकि उनका विकास समग्रता से बन सके और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और समाज के भी काम आ सके। तो ये भी एक बार हमारी सोच इस दिशा में भी निरंतर चलती रहती है।
1: जी सर, एक अहम पहलू आजकल जिस पर सरकार फोकस कर रही है वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि हायर स्टडीज को किस तरह से और बेहतर बनाएंगी, या इसका क्या फ्यूचर है आने वाले समय में?
0: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जब आती है वो एक नदी में जो जल है उसके प्रवाह की तरह होती है, वो आएगी और नीचे बहेगी जैसे नदी बहती है, इसी तरह टेक्नोलॉजी आएगी और उसका इंडस्ट्री में, समाज में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग भी होगा। उसका हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो दो तीन करेक्टरिस्टिक जो मनुष्य में जो टेक्नोलॉजी से अलग उसको पहचान देते हैं वो है जजमेंट करने का, कि कोई काम करना है नहीं करना, ये जजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं देगी, मगर हम व्यक्ति को अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो विवेक का प्रयोग है ये शायद अभी तक प्रकृति ने मनुष्य के पास ही रखा है। लीडरशिप है कि कोई काम कब कर, टेक्नोलॉजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको यूज करोगे जब आप कहोगे तो तब हो जाएगी, नहीं करोगे तो वो अपने आप तो कुछ नहीं करेगी। वो तो लीडरशिप का जो है इनिशिएटिव लेना, रिस्क लेना, काम करना, लोगों के साथ बातचीत करना, गाइडेंस देना, नर्चरिंग करना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं लीडरशिप के, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं उनको रिप्लेस कर सकती। और मेरा ये मानना है कि

0: जो क्रिएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ क्रिएशन, क्रिएशन कैन नॉट रिप्लेस द क्रिएटर इन ए वे,
1: जी
0: क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकती वो क्रिएशन। कोई पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग बड़ी नहीं हो सकती, जो पेंटर है वही बड़ा रहेगा, और आगे वो इससे भी बेहतर बना सकता है। तो
1: जी
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, इससे ऊपर भी कोई अभी होगी, तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम मानते हैं यही अल्टीमेट है, मगर इसमें इंप्रूवमेंट आदमी करता रहता है, व्यक्ति मानव। तो इसलिए तो मानव को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत लाभ का है, क्योंकि जो आज स्कोप है इसका, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ये बढ़ाती है, स्पीड पे ये काम करती है, और उसको और बेहतर स्टोरी टेलिंग के तरीके से भी चीजों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब, इसका प्रयोग लाभ बहुत है शिक्षा में, और हमारा विश्वविद्यालय ये है कि हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। हमारी सोच है कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसके रेलेवेंस को और उसके लाभ को सब बच्चों तक ले जाया जाए।
1: जी सर, अगर रिसर्च की बात करें, जैसे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस तरह के कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो छात्र हैं वो रिसर्च और इनोवेशन को और अधिक अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें?
0: हमारे पहला तो प्रयत्न यही रहता है कि अच्छे विद्यार्थियों को इसमें रिसर्च में लाया जाए, और जो हमारा जो लाइब्रेरी है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके माध्यम से आज सब जो बेस्ट जर्नल्स हैं वो बच्चों को अवेलेबल कराए जाते हैं। बच्चों के साथ उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस और उनके साथ ओरिएंटेशन वो किया जाता है। एक हमारा एमिनेंट लेक्चर सीरीज प्रोग्राम होता है, जिसमें जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जिसने काम किया हो उनके साथ लेक्चर होता है, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो रिसर्च है हम उसको प्रमोट करते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को, और ज्यादातर बच्चों को फेलोशिप दी जाती है, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप हो, जेआरएफ हो, या कोई और फेलोशिप हो, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अब हमारा जो प्रयत्न लगातार जारी है वो हम थोड़े थोड़े रिफॉर्म करके पीएसडी ऑर्डिनेंसेज में और बच्चों के साथ संवाद करके हम चाहते हैं कि बच्चों का एक आउटकम बेस्ड रिसर्च हो, यानी रिसर्च फोकस्ड वे में, कि क्या उसका इकोनॉमिक वैल्यू होगी, क्या उसकी सोशल वैल्यू होगी, इस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो क्वालिटी और जो रिसर्च निकले उसका उपयोग हो कोई, इसकी तरफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।
1: सर, आपने बताया कि आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स ये सब दी जा रही है छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने जो कदम उठाए उनमें ये अहम कदम है कि जो स्कॉलरशिप्स और जो फेलोशिप्स हैं इनको भी बढ़ाया है, तो इससे आपको लग रहा है कि कितना परिवर्तन आ रहा है?
0: देखिए, विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा है कि आप यूजीसी की जो जेआरएफ है उसमें लगभग 40-42 हजार रुपए बच्चों को मिल जाते हैं। इतना एक फेलोशिप, 5 साल तक बच्चा कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर बड़े आराम से बिना किसी तनाव के अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है, बाहर रह सकता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने की हैं, और इसके माध्यम से एक उनके आत्मबल को भी बढ़ावा मिलता है कि उनको इस टाइम में कोई नौकरी नहीं ढूंढनी, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है उसमें।
1: सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस वक्त एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है?
0: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है, उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है। सीयूटी के माध्यम से कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं, उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है। अभी थोड़े दिन के बाद जो यूजी लेवल का है वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और मैं तो यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। हमारा विश्वविद्यालय नैक A++ रेट यूनिवर्सिटी है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड नैक से मिलता है। अभी NIRF में भी हमारा 69th रैंक है, और अभी जो IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें हमारा 19वां नंबर है। तो सारे पैरामीटर के जो ग्रेडिंग और रेटिंग के पैरामीटर है उसमें हम काफी ऊपर, हमारे रिकॉग्निशन मिलती है हमें, और हमारा प्रयत्न भी है कि विद्यार्थियों की जो बदलते समय में जो जरूरतें हैं उनके साथ संवेदनशीलता से उनको पूरा कर उनमें योग्यताएं कैपेबिलिटी का विकास किया जाए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये आश्वासन देता हूँ कि उनको शिक्षा की जो क्वालिटी, एजुकेशन से संबंधित जो बातें हैं

0: ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनको पूरा करता है।
1: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: समय नादाब उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज 21 जून है और आज के दिन को आलमी योम योगा के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से आप समाध फरमाएंगे, पहले एक मुख्तसर तकरीर

0: थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
2: समय नादाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज 21 जून है और आज के दिन को आलमी योम योगा के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से आप समाअत फरमाएंगे। पहले एक मुख्तसर तकरीर। योगा सिर्फ वर्जिश नहीं, बेहतर ज़िंदगी जीने का फ़न भी है। इसके बाद हम आलमी योम योगा के हवाले से आपको एक उभी रिपोर्ट सुनवाएंगे। अब प्रोग्राम के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे जनाबे राज आज़मी से उनका कलाम। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस मुख्तसर तकरीर से। उन्वान है, योगा सिर्फ वर्जिशी नहीं, बेहतर ज़िंदगी के जीने का फ़न भी है। आलमी योम योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का ख़ास मकसद ये है कि हिंदुस्तान की कदीम सकाफत के ज़रिए जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मशक्क़तों के साथ सेहत और तंदरुस्ती के फ़वाद को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। योगा करने के बहुत से फ़ायदे हैं। योगा करने से बहुत सी बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं, खुद को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। साथ ही योगा करने से रूहानी सुकून भी मिलता है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा वक्त निकाल कर योगा को एक मामूल बना लें तो यकीनन आपके जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फ़वाद सामने नज़र आएंगे। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी अवाम को सेहत के तई बेदार रखने के लिए योगा को ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक नई शिनाख्त अता कराई है और पूरी दुनिया को योगा की अफादियत से मुतारिफ़ कराया है। 2014 में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में इस दिन को आलमी सतह पर मनाने की तजवीज़ पेश की थी। 11 दिसंबर सन 2014 को इस तजवीज़ को मंजूरी मिल गई और पहला आलमी योम योगा 21 जून सन 2015 को मनाया गया। इस साल 12वां योम योगा हम मना रहे हैं। इस मौके पर सरकारी महकमों, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर इदारों में योगा के हवाले से खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। बैनुल अक्वामी योम योगा के मौके पर हमें योगा की अफादियत को समझना होगा। योगा के बहुत से फ़ायदे हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में इसे दाखिल करना होगा ताकि सेहत के साथ साथ हमारा जहन भी तरोताज़ा रहे। योगा सिर्फ वर्जिश ही नहीं, बेहतर ज़िंदगी जीने का फ़न भी है। सामईन, अभी आप आलमी योम योगा के मौके पर ये मुख्तसर तकरीर समाअत फरमा रहे थे और अब समाअत फरमाइए एक ओबी रिपोर्ट आलमी योम योगा के हवाले से, जिसे पेश कर रहे हैं शफकत अली खान।
3: सामईन, आलमी योगा डे पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाया करती हैं। हमने बातचीत की है कुछ ऐसी शख्सियतों से जो आलमी योगा डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद कर रही हैं। इस मौके पर हमने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन से बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया कि
4: अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आपको मैं सब बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, योग जो है भारत से निकली हुई एक विधा है और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वैश्विक स्तर पर इसको पहचान दिलाई। इसको वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है हर देश में। मैंने कई जगह देखा, एक बार मैं कनाडा में थी, एक महीने पहले से उस समुद्र के किनारे योगा दिवस की बहुत बड़ी रूप से तैयारियां चल रही थी और भारत में हम लोग लगातार इसका मना रहे हैं और गोरखपुर का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि हठ योग का ओरिजिन यहाँ से हुआ है और हमारी गोरखपीठ से हठ योग का ओरिजिन हुआ है। तो योगा का एक बड़ा एक सेंटर भी है गोरखपुर। और गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात करें, हम लोगों ने 5 जून से योगा दिवस का लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं।
3: यूनिवर्सिटी के अलावा भी क्या आप लोग योगा के प्रोग्राम और भी कहीं मुनक्किद कर रहे हैं?
4: योग का कार्यक्रम जो जेल में महिला बंदी हैं उनके लिए योग का कार्यक्रम कराया, उसके बाद बालगृह में हमने कराया, कैंसर रोगियों के लिए हमने कराया, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हमने

0: अवेयरनेस प्रोग्राम कराए, योगा के ऐसे आसन हैं जो उनकी प्रेगनेंसी में उनको हेल्प कर सकता है और प्रेगनेंसी के पीरियड उनको बेहतर बना सकता है और शायद बच्चे के विकास में भी बेहतर हेल्प कर सकता है इसके लिए।
1: ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी में योग बंधन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, आखिर इसका मकसद क्या था?
0: हम लोगों ने योग बंधन का एक कार्यक्रम कराया, वो जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे 5 देशों के साथ में, उसमें मलेशिया और उसके बाद हमारा बैंकॉक थाईलैंड के साथ हमने करा और फिजी के साथ हमने करा और इस तरह विश्व के अलग अलग देशों के साथ में हमने योगा की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज करी, योगा के लिए अवेयरनेस करी और उसमें बहुत उत्साह दिखाई दिया हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेंट का, बहुत उत्साह दिखाई दिया।
1: क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा मुकाम भी है जहाँ योगा करने की सहूलियत दस्तियाब है?
0: हमारे यहाँ एक योग वाटिका की स्थापना करी है हम लोगों ने कैंपस में, उस योग वाटिका में हमने बच्चों के लिए शिविर लगाए अपने छात्र छात्राओं के लिए, एनएसएस ने कराया। एक चौरी चौरा स्मारक है हमारे विश्वविद्यालय में, वहां पे हमने योग का कार्यक्रम कराया अपने बच्चों के लिए। उसके अलावा आज हमारे यहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, गोरखनाथ शोधपीठ हमारे उसमें चल रहा था, तो आज उसका समापन था। उसके बाद अभी और कार्यक्रम बचे हैं हमारे, हम लोग यहाँ से योगा को लेकर एक रैली निकालेंगे अवेयरनेस के लिए, यहाँ से जो चंपा देवी पार्क है वहां तक हम लोग जाएंगे, योग के अवेयरनेस को एक मैसेज देंगे, पूरे प्रदेश को एक मैसेज देंगे और बल्कि विश्व को एक मैसेज देंगे योगा के लिए।
1: आलमी यौम योगा के बारे में बताते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर के आयुष विंग के डॉक्टर संतोष गुप्ता,
2: यहाँ पर योग के द्वारा किस चीज का निदान किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है और कैसे योग करें जिससे प्रत्येक जो बीमार व्यक्ति हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं या जिनको सर्वाइकल है, जिनको बैक पेन है, उन सब चीजों का यहाँ पर उपचार किया जाता है। वज्रासन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो आप खाना खाने के बाद ही कर सकते हैं, इससे आपकी जो गैस है, एसिडिटी है, बनी रहती है बार बार जो महसूस करते हैं लोग, उसकी समस्या से निदान मिलेगा। केवल मात्र 15-20 मिनट खाना खाने के बाद आप वज्रासन की अवस्था में बैठिए, आपकी गैस की समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। योग का महत्व तो जो है, ऋषि मुनियों ने हमारे बहुत ही विस्तृत योगा के बारे में बताया है। जो महर्षि पतंजलि है, इन्होंने योग का पूरा विश्व पर एक अलग पहचान बनाई है और उन्होंने योग का एक ऐसा वरदान दिया है कि जिससे मनुष्य जाति स्वस्थ रह सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्वव्यापी बनाया है, इसलिए कि सभी व्यक्ति, जो पृथ्वी पर सभी व्यक्ति जितने भी लोग हैं, वो स्वस्थ रह सके और ये स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है योग। योग अगर आप अपने दिनचर्या में उतार लेते हैं तो किसी भी तरह की आप बीमारी से ग्रसित होने से बच जाएंगे और हमेशा पूरे जीवन आप स्वस्थ रहेंगे।
1: इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने हमें बताया कि
3: हमारे विश्वविद्यालय में हर वर्ष लगभग 1 महीने का कार्यक्रम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। इस वर्ष भी 1 जून से 21 जून तक लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम हमने एक 4 दिन की योग प्रशिक्षण वर्कशॉप की थी, जो शहर के बच्चे बड़े कोई भी आकर के उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते थे, वो फ्री था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय के जो तमाम सारे जगहों से MOUs हैं कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से, जैसे मलेशिया से, फिजी से, तो उनके साथ हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम किए। अभी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से चंपा देवी पार्क तक योग जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो हर वर्ष हम लोग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से।
1: क्या आलमी योगा डे के मौके पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी हिस्सा ले रहे हैं?
3: हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो भी यहाँ पर शहर में उपलब्ध है छात्र छात्राएं, उनको आमंत्रित किया है, अपने अलुमनाई के साथ एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उनके साथ योग का कार्यक्रम है। 21 तारीख को हर वर्ष हमारे वहाँ विश्वविद्यालय परिसर में, जो हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी और शहर के जो भी लोग आना चाहें, वो वहां पर आकर के उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, जहाँ पर योग प्रशिक्षक होते हैं और सामूहिक योग का कार्यक्रम किया जाता है।
1: आलमी यौम योगा के मौके पर 45 NCC बटालियन गोरखपुर के एसोसिएट NCC ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर वाहिद अली ने हमें बताया कि
4: योग शब्द संस्कृत के यूज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। व्यवहारिक स्तर पर यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का साधन है, अर्थात यह निरोगी जीवन जीने की एक अचूक कला है। हम सब जानते हैं कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

0: मनाया जाता है। इस साल 12वां योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग, मतलब योगा बराए सेहतमंद बुढ़ापा। इस साल का योग दिवस कई मायनों में खास माना जा रहा है। बदलती लाइफ स्टाइल, बढ़ती उम्र के साथ होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों के बीच इस बार की थीम लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन की दिशा में प्रेरित करने का संदेश देती है। साथियों, योग केवल फिटनेस का जरिया नहीं है, बल्कि बढ़ती उम्र में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने का इफेक्टिव मेथड है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद न आने की दिक्कत और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि योग अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में अपनाया जा रहा है।
1: डॉक्टर वाही साहब, योगा के आसन के बारे में कुछ और बताइए।
0: ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, श्वासन जैसे योगासन संतुलन, लचीलापन और ऊर्जा बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा प्राणायाम और ध्यान मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने का एक अच्छा जरिया है। योग दिवस 2026 की थीम लोगों को यह संदेश देती है कि उम्र चाहे कोई भी हो, नियमित योग के जरिए इंसान अपने शरीर और मन को लंबे समय तक हेल्दी और एक्टिव रख सकता है। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप आलमी यौमे योगा पर ये रेडियो समाज फरमा रहे थे। रिकॉर्डिंग और आवाज थी शफकत अली खान की व पेशकश नूर मोहम्मद की।
2: समय नबी आप आलमी योमे योगा के मौके पर ये ओबी रिपोर्ट समाप्त फरमा रहे थे और एक मरतबा फिर हम आपको लिए चलते हैं अदब की दुनिया में। समय योगा से जहां जिस्म को नई तवानाई और क़ुव्वत मिलती है, वहीं शायरी से हमें जहनी आसूदगी में असर आती है। शायर हमारे ख्वाबीदा जहनों को बेदार करता है और हमारे इर्द गिर्द के माहौल से हमें रोशनास भी करता है। दबिस्तान गोरखपुर की वो बावकार शख्सियतें जो रफ्ता रफ्ता हमसे जुदा होती जा रही हैं, जिनके दम से दबिस्तान गोरखपुर की महफिलें सरसब्ज़ो शादाब थीं, इनमें एक मुअद्दबर नाम जनाब राज आज़मी का था। अब वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनका कलाम आज भी महफूज है। समाअत फरमाइए कलाम शायर के तहत जनाब राज आज़मी से उनका कलाम।
3: गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। तुम

सीखा है सितारों ने फरोजा होना, जिनसे सीखा है सितारों ने फरोजा होना, शेरज किया है उसको।

जिसकी किस्मत ही में लिखा हो सोखंदा होना, जिसकी किस्मत ही में लिखा हो सोखंदा होना, तुम मेरे वास्ते हर

बात है। बाहर तो नुमाया होना अपनी फितरत है, बाहर तो नुमाया होना। शेर मुलाजा फरमाइए कि चंद लम्हे ये गानी मत है बचा कर रख लो, चंद लम्हे ये गानी मत है बचा कर रख लो, वरना तुम

0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं दिव्या श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये भक्ति रचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से

0: चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
0: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रे, INS दूनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 107.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकमाथरी, लोक गीतों का कार्यक्रम। लोकमाथरी में स्वागत है आप सभी का। आज जिन कलाकारों को हम आपको सुनवाएंगे वो हैं संगीता मिश्रा और राम सखा यादव और साथी। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं देवी गीत, कलाकार संगीता मिश्रा।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता मिश्रा को, और अब आइए सुनते हैं राम सखा यादव और साथियों को। पहले सुनते हैं उनके स्वर में ये देवी गीत।

इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमात्री अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सभी सुधीर श्रोताओं को शिप्रा श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम। आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आज बहुत ढेर सारी बातें करेंगे और आज का दिन आपको बता दें कि बहुत ही खास है। आज है 21 जून और मुझे पूरा विश्वास

तो आशा कि आप सभी ने सुबह से इस उत्सव को खूब धूमधाम से मनाया होगा। बताने की जरूरत नहीं है, जी हाँ, आज है उत्सव एकता का। किसकी? सुर और सांस की एकता का उत्सव। 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा डे, और साथ ही में हम मना रहे हैं आज वर्ल्ड म्यूजिक डे। इसीलिए मैंने कहा सुर और सांस की एकता का उत्सव। आज के दिन हम सुरों को साधते हैं, मन को साधते हैं और शरीर के साथ मस्तिष्क को भी मजबूत और दुरुस्त करने वाले योग का दिन मनाते हैं। और मन को सुकून और आनंद देने वाली सुर लहरियों यानी संगीत दिवस को भी आज हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये बात साझा करना चाहते हैं कि आखिर 21 जून को ही क्यों मनाया गया वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे। क्यों? क्योंकि आज है वर्ष का सबसे लंबा दिन, और योग भी मनुष्य को बनाता है दीर्घायु। और जो गीत आप

मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये बात साझा करना चाहते हैं कि आखिर 21 जून को ही क्यों मनाया गया वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे। क्यों? क्योंकि आज है वर्ष का सबसे लंबा दिन, और योग भी मनुष्य को बनाता है दीर्घायु। और जो गीत आप सुन रहे हैं ओम नमः शिवाय की चैंटिंग,

ये हमें जोड़ता है बहुत ही गहराई से ध्यान की तरफ। जी हाँ, ध्यान की बात अगर हम करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में जो छवि उभरती है वो उभरती है महादेव की, शिव जी की। और शिव जी को कहते हैं कि योग विद्या में शिव जी को आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है। योग जो जोड़ता है हमें परमात्मा से, और वही परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं योग का। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषियों मुनियों ने ही योग को प्रारंभ किया, और बाद में श्री कृष्ण, जिनको योगी की संज्ञा दी गई, महावीर और बुद्ध ने भी अपनी तरह से इसे विस्तार दिया, और इसके पश्चात पतंजलि ने इसको सुव्यवस्थित रूप दिया। ये थी बात योगा की शुरुआत की।

योग दिवस का नारा है, विश्व योग दिवस मनाए, योग से जीवन सफल बनाए। हम सब का भी यही नारा है कि योग दिवस को सफल बनाए। भाई हो भी क्यों ना, हाँ हम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तभी तो माहौल होगा खुश, देश रहेगा उन्नत। तो योग का अर्थ है जोड़ना, इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा से जुड़ना। और हम परमात्मा के ही अंश हैं, और जब सांसारिक बंधन में आ गए हैं तो संयम और साधना से अपना विस्तार पहचान कर आध्यात्मिक अनुशासन से जब हम जुड़ते हैं तभी हम योग के सही संदेश को प्राप्त करते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो योग हमें स्वस्थ रहने, बीमारियों से लड़ने और तनाव को कम करने में जब मदद करता है तो क्यों ना जुड़े योग से। और जब बात आती है संगीत के साथ संगीत की, तो संगीत की लय से सांसों को संयमित करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें तो बहुत ही आसान हो जाता है संगीत के साथ योग। क्या आपको पता है कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 को पहला विश्व संगीत दिवस मनाया गया था। तो आइए अपनी रूह को जोड़ते हैं इस सुरधारा से जो हमें विजयी होने का संकेत देता है। एक टिप आपको देती हूँ, फिर ये गाना सुनाऊंगी, कि दिन भर में 5 मिनट ओम का उच्चारण जरूर करिए। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो ये ज़रूर करिए, क्योंकि ओम का उच्चारण जो होता है वो आपकी इंटरनल एनर्जी लेवल को बहुत अधिक बूस्ट कर देता है। आप बहुत अधिक खुश और आनंदित रह सकते हैं और नेगेटिविटी को दूर करके वातावरण को बिल्कुल शुद्ध बना देता है। मन, शरीर और आत्मा को एकत्व में लाता है ये ओमकार का उच्चारण। तो करें योग, रहे निरोग। आज के दिन में हम लेते हैं संकल्प कि भारत को विश्व गुरु बनाए रखेंगे, मिलकर योग दिवस हर दिन मनाएंगे।

तो देखा आपने, योग और संगीत का जो तारतम्य होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है। आज हम सांस को सुर से जोड़ रहे हैं। योग हमें अंदर ले जाता है, यानी जैसा इस गीत में कहा गया, झांक ले मन के अंदर, यानी अपने से खुद का साक्षात्कार करना और खुद को पहचानना, यही है योग। और संगीत हमें ऊपर उठाता है। तो योग सांस लेने का तरीका सिखाता है, तो संगीत सांस में लय भर देता है। और इस योग के द्वारा संगीत को साधने का आज का जो उत्सव है वो बहुत ही अद्भुत है। तो आपको अब बता दें कि विश्व संगीत दिवस आज हम मना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि संगीत की वैश्विक भाषा का जश्न मनाएं और उसे बढ़ावा देने के लिए हम इसको निरंतर आगे बढ़ाएं। संगीत के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और नस्लों के लोगों को एक साथ लाने के लिए भी विश्व संगीत दिवस आज के दिन हम मनाते हैं। तो देखिए ना, अगर आप योग से जुड़ें और संगीत से जुड़ें तो बहुत अद्भुत अपने अंदर चेंजेस महसूस करते हैं। जैसे अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं गहरी सांसों के साथ, तो 2 मिनट में आपका दिमाग हो जाएगा शांत। बांसुरी या तानपुरी की धुन पर अगर आप करते हैं ध्यान, तो मन भटकता नहीं बल्कि हो जाता है स्थिर। अगर सूर्य नमस्कार करते समय हल्की सी ताल रखते हैं तो थकान का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप 5 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान और वार्म अप विद म्यूजिक कर लेते हैं तो आपको ये कर देगा लाइट और आप जीत जाएंगे जिंदगी की कोई भी फाइट और मन को कर लेंगे बिल्कुल डिलाइट। तो लीजिए, एंजॉय करिए ये म्यूजिक फ्लाइट और पहुंच जाइए आनंद की हाइट पर।

इस गीत को सुनते हुए इस सुर में डूबे हुए गहरी गहरी सांस लीजिए और आंखों को बंद कीजिए। देखिए आपको अपनी आंखों में मिलेगा खूबसूरत नज़ारा परमात्मा से मिलन का।

देखिए ना, आज हम योग दिवस का उत्सव मना रहे हैं। भारी तादाद में, भारी संख्या में लोग जगह जगह योग का अनुष्ठान कर रहे हैं। और जब एक काम कोई ईश्वर की स्मृति में, ईश्वर से जुड़ने के लिए एक परम पवित्र उद्देश्य के साथ भारी संख्या में करता है, तो उसका प्रभाव हो जाता है बहुत ही भारी। और ये योग जब सांस की लय के ताल के साथ जुड़ता है, तो तन का व्यायाम होता है, मन में खुशबू छा जाती है। अगर आप खड़े होकर बांसुरी की धुन सुन करके आंखें बंद करके खुद से जुड़ जाते हैं, तो ये एक परम शक्ति से जुड़ने का पहला चरण बन जाता है। सांस अंदर गई तो सो, सांस बाहर गई तो हम। और यही है उपनिषद कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही तुम हूँ। जब आप आसन करते हैं तो इससे मन में मधुरता आती है, तन निखर जाता है। योग अगर संगीत के साथ करते हैं तो जैसे जीवन में सुगंध सी छा जाती है। अगर आप ओम की गूंज में खो जाते हैं और ध्यान की गहराइयों में डूब जाते हैं, तो न शरीर पे होता है बोझ और दुनिया का ना होता है कहीं शोर। संगीत और योग यानी मुक्त आत्मा, और यही है जीवन का मंत्र, आगे बढ़ने का मंत्र। और जब आप परमात्मा से जुड़ गए तो एक तरीके से मुक्ति का द्वार खुल जाता है और आप एक अनंत यात्रा की ओर बढ़ने लगते हैं।

बढ़ने के क्रम में जब हम योग से जुड़ते हैं तो अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और ये मार्ग तब आसान हो जाता है जब हम अपने अंदर कुछ गुणों का समावेश कर लेते हैं। जैसे किसी गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम योग करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अलग ही असर होता है, अलग ही प्रभाव होता है। अगर हम अपने अंदर घमंड और अभिमान को निकाल फेंकते हैं और उसके साथ सबके लाभ की बात सोचते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर के जब हम योग करते हैं, जब हम दूसरों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा परमात्मा से योग और मजबूती की ओर बढ़ता है। हम योग के प्रभाव से अपने को बहुत ही सशक्त कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में प्रसन्नता आती है, मजबूती आती है। अगर हम अहंकार से दूर होकर के निरंतर और नियमित अभ्यास करते हैं, खुद प्रसन्न होकर दूसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर के गुणों से अपने को अभिभूत करते हैं और ईश्वर की शरणागति, ईश्वर में मन लगा करके अगर हम योग से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य से जुड़ जाते हैं। और इसके साथ अगर संगीत भी जुड़ जाता है तो देखिए ये गीत कैसे इस बात को बल प्रदान कर रहा है।

0: अभी आपने सुनी अंकुर जायसवाल की विशेष वार्ता इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
2: पहली बार
3: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से कार्यक्रम बाल संग में। तो बच्चों हम सभी अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को पाना चाहते हैं ना, और जैसे अच्छी शिक्षा है, अच्छे खिलौने, सुंदर कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और ढेर सारी खुशियाँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है बच्चों कि इन सब का आनंद लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है?
2: अरे दीदी, हमारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दोनों दीदियाँ ऐसा कौन सा खजाने की बात कर रही हैं जो सोने चांदी से भी अधिक कीमती है। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वो खजाना है हमारा अच्छा स्वास्थ्य। इसलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है।
1: बिल्कुल सही कहा। और बच्चों अगर आपके पास ढेर सारे खिलौने, सुंदर कपड़े और बहुत सारा पैसा हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो, तो क्या आप उसका आनंद ले पाएंगे?

0: नहीं शायद, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और आप ऊर्जावान हैं, तो आप जीवन की सारी खुशियां का मजा ले सकते हैं ना।
1: दीदी, स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं, स्वस्थ का मतलब है कि हमारा शरीर, मन और विचार सभी अच्छे और संतुलित हो। एक स्वस्थ बच्चा पढ़ाई में मन लगाता है, खेलकूद में भाग लेता है, नई नई चीज़ें सीखता है और हमेशा खुश रहता है।
0: तो बच्चों, हम अपने शरीर को एक मशीन की तरह जो समझते हैं, जैसे मशीन एक अच्छे ईंधन और देखभाल की ज़रूरत होती है ना उसको, वैसे ही हमारे शरीर को भी पौष्टिक भोजन, व्यायाम और आराम की ज़रूरत होती है।
1: हमें अपने भोजन में दाल, रोटी, चावल, दूध, दही, हरी सब्जियां, फल और सूखे मेवे शामिल करने चाहिए। ये सब हमें ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। मौसमी फल आम आ रहा है इस समय, तरबूज, खरबूजा, खट्टे फल, संतरा, हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन देते हैं ये सब मिलकर।
0: बिल्कुल। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि खेलना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है? जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। इसलिए मोबाइल और टीवी पर अधिक समय बिताने के बजाय खुले मैदान में खेलना चाहिए, है ना बच्चों?
1: क्योंकि स्वच्छता भी अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा। रोज नहाना, नाखून काटना, दांत साफ करना और हाथ धोना हमें कई बीमारियों से बचाता है। विशेष रूप से भोजन से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं आप।
0: बिल्कुल। और भाई बच्चों, एक बात और भी कहना चाहूँगी कि आप पर्याप्त नींद भी लेना एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और स्वास्थ्य का आधार भी है। और स्कूल जाने वाले बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नींद से शरीर और मस्तिष्क दोनों ही को आराम मिलता है और अगले दिन हम फिर से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं।
1: तो हमारे प्यारे बच्चों, दीदी आप सभी से यही कहना चाहती हैं कि केवल शरीर ही नहीं मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपने माता पिता, शिक्षकों और मित्रों का सम्मान करें और खुश रहने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
0: बिल्कुल। और बच्चों, एक बहुत ज़रूरी बात, भाई गर्मी का मौसम है तो इन दिनों आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए खूब पानी पियो, क्योंकि पानी शरीर को ठंडा रखता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। घर से निकलने पर टोपी, छाते या और भी जो आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं, अंगोछा है, कुछ भी उसका यूज़ ज़रूर करें, है ना। और अनीता दीदी, भाई मैं सोच रही हूँ कि हमारे स्टूडियो में बच्चे भी आ गए हैं, तो उससे पहले हमारा एक कार्यक्रम है रोचक जानकारियाँ, उसको हम लोग सुनवा देते हैं पहले। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं रोचक जानकारियाँ विनय श्रीवास्तव भैया से और रोशनी वंसल दीदी से।
2: बच्चों, एक बार हम फिर हाजिर हैं रोचक जानकारियों के साथ। मैं हूँ विनय श्रीवास्तव
3: और मैं रोशनी बंसल।
2: रोचक जानकारियाँ, जहाँ हम खोलते हैं दुनिया की अजीबो गरीब और अनसुनी कहानियों का पिटारा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा घटता है जो हमारे होश उड़ा देता है?
3: दोस्तों, बाहर देखो, सूरज चाचू पूरी ताकत से चमक रहे हैं। स्कूल की घंटियों से छुट्टी मिल चुकी है और चारों तरफ है गर्मी का मौसम।
2: वही गर्मी जिसमें मम्मी पापा दोपहर में बाहर जाने से मना करते हैं। पर फिक्र नॉट दोस्तों, अगर बाहर धूप है तो क्या हुआ? आज हम घर बैठे बैठे ही आपको कराएंगे कुछ ऐसी मजेदार और अनोखी सैर जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं गर्मी के कुछ जादुई और कूल कूल सच जानने के लिए?
3: तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के एक बहुत बड़े अजूबे की, पेरिस का एफिल टावर। क्या आप जानते हैं कि एफिल टावर को भी गर्मी लगती है? अरे सच में, तेज गर्मी की वजह से उसका लोहा फैल जाता है और गर्मियों में एफिल टावर लगभग 6 इंच तक लंबा हो जाता है, है ना जादू? और हाँ, सिर्फ एफिल टावर ही नहीं, हमारे आसपास घूमने वाले छोटे से झिंगुर

0: जिसे क्रिकेट भी कहते हैं, गर्मियों में थर्मामीटर बन जाते हैं। अगर आप 15 सेकंड तक उसकी ची ची की आवाज को गिनें और उसमें 37 जोड़ दें, तो आपको बाहर का तापमान पता चल जाएगा। अगली बार जरूर ट्राई करना।
1: अच्छा बच्चों, गर्मी में जब हमें प्यास लगती है तो हम खट खट करके पानी पीते हैं ग्लास से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास के जानवर पानी कैसे पीते हैं? उनके पानी पीने के तरीके में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। आप किसी भी जानवर को पानी पीते देखते हैं ना बच्चों, तो बता सकते हैं कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी, है ना चौंकाने वाली बात। तो सुनो कैसे, जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं ना बच्चों, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा या हिरण, वो पानी में अपने होठों को यानी कि मुंह को डुबाकर इंसानों की तरह पानी को घूट घूट करके पीते हैं। लेकिन जितने भी मांसाहारी जीव यानी कि जो शिकारी जानवर होते हैं, जैसे शेर, चीता या बिल्ली और हमारे प्यारे डॉगी, वो अपनी जीभ को चम्मच की तरह मोड़ते हैं और लप लप करके पानी चाटते हुए पीते हैं। तो बच्चों, अगली बार जब घर के बाहर किसी जानवर को आप पानी पीते देखना ना, तो गौर करना कि वो घूट घूट करके पानी पी रहा है या लप लप करके चाट रहा है। आपको उसका पूरा सीक्रेट पता चल जाएगा।
0: गर्मियों का मौसम हो, स्कूल की लंबी छुट्टियां हो और हम नानी दादी के घर यानी अपने प्यारे गांव को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शहरों की इस भीड़ और उमस से दूर असली मजा तो गांव के ठंडे कुओं, आम के बगीचों और ठंडी छांव में है। इस बार मम्मी पापा से जिद करके गांव जरूर जाना। वैसे दोस्तों, जब आप गांव जाओगे तो आपको साधारण गांव दिखेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे अनोखे और जादुई गांव भी हैं जिनके बारे में सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं।
1: तो मैं बताता हूँ, पहला जादुई गांव ये है जुड़वा बच्चों का गाँव। बच्चों, केरल में एक गाँव है जिसका नाम है कोडिन्ही। इस गांव को ट्विंस टाउन भी कहते हैं, क्योंकि यहां रहस्यमयी रूप से हर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस छोटे से गांव में 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। स्कूल में टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको डांट रहे हैं और किसको नहीं।
0: दूसरा जादुई गांव बिना दरवाजों का गांव, महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर। इस पूरे गांव में किसी भी घर, दुकान या बैंक में भी दरवाजे और ताले नहीं होते। यहां के लोग मानते हैं कि उनके घरों की रक्षा भगवान खुद करते हैं और यहां सदियों से कोई चोरी नहीं हुई।
1: और तीसरा जादुई गांव है दो देशों वाला गांव, नागालैंड का लोंगवा गांव। ये गांव भारत और म्यांमार देश के बॉर्डर पर है। यहाँ के राजा का घर तो इतना अनोखा है कि उसका रसोई घर भारत में है और सोने का कमरा म्यांमार में। यानी लोग खाना भारत में खाते हैं और सोने दूसरे देश में जाते हैं।
0: वाह भाई वाह, इतने अनोखे गांव सुनकर तो सच में मजा आ गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की, चाहे वो केरल का जुड़वा बच्चों वाला गांव हो या नागालैंड का दो देशों वाला घर, इन सब रहस्यों को ढूंढा किसने? हम इंसानों ने, अपनी खोजी आँखों से। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप इस मजेदार दुनिया को देखें ना, तो सिर्फ एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक लिटिल डिटेक्टिव यानी एक खोजी के रूप में देखें। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है आपका ये सोचना कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों, जब जब इंसान किसी लाचारी में फंसा है या उससे कोई गलती हुई है, तब तब दुनिया में कमाल के आविष्कार हुए हैं।
1: अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई सबसे महान आविष्कार वैज्ञानिकों ने जानबूझकर नहीं किए हैं, बल्कि वो उनकी लाचारी, किसी गड़बड़ी या फिर किसी मजेदार दुर्घटना की वजह से अपने आप ही हो गए हैं। यकीन नहीं होता बच्चों? तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी रसोई में रखी छोटी सी माचिस की। सन 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक वैज्ञानिक एक लकड़ी की डंडी से कुछ केमिकल्स मिला रहे थे। मिलाते मिलाते उस डंडी के कोने पर एक सख्त गांठ बन

0: जब वो उसे साफ करने के लिए एक पत्थर पर रगड़ने लगे तो अचानक उसमें से आग निकल आई। बस एक छोटी सी गड़बड़ी से पूरी दुनिया को माचिस मिल गई।
1: इसी तरह लाखों लोगों की जान बचाने वाली दवा पेनिसिलिन, उसका आविष्कार भी एक लापरवाही से ही हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के डॉक्टर अपनी लैब को बिना साफ किए छुट्टियों पर चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक गंदी प्लेट पर कुछ फंगस उगाई थी जिसने आसपास के सारे बैक्टीरिया को मार दिया था। अगर वो उस दिन उस गंदगी को देखकर फेंक देते तो आज शायद मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं होता। शेफ जॉर्ज क्रम ने गुस्से में ग्राहक को सबक सिखाने के लिए आलू को एकदम कागज जैसा पतला काट दिया और बन गए आपके पसंदीदा पोटैटो चिप्स। एक इंजीनियर की जेब में रखी चॉकलेट बार रडार की तरंगों से अचानक पिघल गई और बन गया आपके किचन का माइक्रोवेव ओवन।
0: तो देखा बच्चों, एक खोजी दिमाग हमेशा गलतियों में भी कुछ नया आविष्कार कर लेता है। अच्छा, जब हम आविष्कारों और सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, बैंक। हम सब जानते हैं कि बैंक क्या करते हैं। हाँ भाई, मम्मी पापा वहाँ पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं या फिर लोन लेते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ पैसों के बैंक नहीं होते हैं? कुछ ऐसे अनोखे बैंक भी हैं जहाँ पैसा नहीं बल्कि कुछ और ही जमा होता है।
1: जैसे पहला अनोखा बैंक सीड बैंक, नॉर्वे देश में पहाड़ों के बीच बर्फ के अंदर एक बहुत बड़ा बैंक बनाया गया है जिसे ग्लोबल सीड वॉल्ट कहते हैं। यहाँ पैसों की जगह दुनिया भर के करोड़ों पौधों और फसलों के बीज को लॉकर में बंद करके सुरक्षित रखा गया है ताकि अगर कभी दुनिया में कोई बड़ी आफत आए या फसलें नष्ट हो जाएं तो हम यहाँ से बीज निकाल कर दोबारा दुनिया को हरा भरा कर सकें।
0: और दूसरा अनोखा बैंक है ब्लड बैंक। जब कोई बीमार होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर पैसों से नहीं बल्कि ब्लड बैंक से खून लाकर उसकी जान बचाते हैं। यहाँ लोग खुद जाकर अपना खून डोनेट करते हैं ताकि दूसरों की मदद हो सके।
1: तीसरा अनोखा बैंक मेमोरी बैंक। कुछ जगहों पर तो साइंटिस्ट इंसानों की यादों और पुरानी ऐतिहासिक चीजों का डिजिटल मेमोरी बैंक भी बना रहे हैं ताकि आने वाले सैकड़ों सालों तक हमारे देश का इतिहास और हमारी यादें सुरक्षित रहें।
0: बच्चों, जब गांव की बात हो रही है तो अक्सर गांव में हम जब खुले आसमान में देखते हैं तो चांद कितना खूबसूरत दिखाई देता है ना। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि चांद कितनी दूर है, उसमें क्या क्या है और उसका आकार हर दिन घटता और बढ़ता रहता है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी मून की। जानते हो बच्चों, 29 जून को पूर्णिमा है। इस समय आकाश में चंद्रमा की स्थिति सूर्य के ठीक विपरीत होगी। वो सूर्य की किरणों से प्रकाशित रहेगा और इसी चंद्रमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। ये उस समय को दर्शाता है जब अमेरिकी कबीले के लोग पके फलों की कटाई करते हैं और स्ट्रॉबेरी भी इसी समय पकती है। इस चंद्रमा के और भी नाम हैं, जैसे बेरीज राइपन मून अर्थात बेरी पकने वाला चंद्रमा।
1: चेरोकी लोग ग्रीन कॉर्न मून कहते हैं अर्थात हरा मक्का वाला चंद्रमा। लिंगिट लोग बर्थ मून अर्थात जन्म वाला चंद्रमा की संज्ञा देते हैं। इसी क्रम में जुलाई के चंद्रमा को बक मून कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जून की पूर्णिमा का चंद्रमा अपने मार्ग में सबसे नीचे से गुजरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीष्म संक्रांति के बहुत करीब होता है। सूर्य आकाश में सबसे ऊंचाई पर रहता है। 29 जून को दिखने वाला पूर्ण चंद्रमा धनु तारा मंडल के बीच नजर आएगा। हालांकि चंद्रमा से निकलने वाली किरणें इन तारों की चमक फीकी कर देंगी।
0: बच्चों, जानते हो आज का दिन बहुत खास है। आज यानी 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति है। आज का दिन वर्ष का

सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहता है। इससे पहले 10 जून को चंद्रमा राशि के निकट, 12 को मंगल के निकट, 16 को बुध और 17 को शुक्र और बृहस्पति के करीब दिखाई दिया। वर्तमान में सूर्य वृषभ राशि में है, जो आज यानी 21 जून को मिथुन राशि के तारों के बीच पहुंच रहा है। बुध को भी इसी तारा मंडल के बीच देख सकते हैं। शुक्र कर्क राशि के बीच रात 9:35 तक देखा जा सकता है, जबकि मंगल वृष राशि के तारों के बीच भोर में 3 उदय हो चुका है। शनि को मीन राशि के तारों के बीच रात में 12:48 तक देखा जा सकता है। तो बच्चों, रोचक जानकारियों को सुनने के बाद क्या आपके दिमाग की बत्ती जली? क्या आपके मन में भी कौतूहल और जिज्ञासा का कोई कीड़ा कुलबुलाया है? जरा खुद को और अपने आसपास की चीजों को

0: मिथुन राशि के तारों के बीच पहुंच रहा है। बुध को भी इसी तारा मंडल के बीच देख सकते हैं। शुक्र कर्क राशि के बीच रात 9:35 तक देखा जा सकता है, जबकि मंगल वृष राशि के तारों के बीच भोर में 3 उदय हो चुका है। शनि को मीन राशि के तारों के बीच रात में 12:48 तक देखा जा सकता है। तो बच्चों, रोचक जानकारियों को सुनने के बाद क्या आपके दिमाग की बत्ती जली? क्या आपके मन में भी कौतूहल और जिज्ञासा का कोई कीड़ा कुलबुलाया है? जरा खुद को और अपने आसपास की चीजों को आज से गौर से देखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी की डांट से बचने के लिए या खिलौने के टूटे टुकड़ों को जोड़ते समय आपने भी अनजाने में कोई नया आविष्कार कर डाला हो? याद रखिए, हर वो बच्चा खोजी है जिसके पास सवाल पूछने की आदत है। गलतियों से मत डरिए, क्योंकि हर बड़ी खोज किसी न किसी छोटी सी गड़बड़ से ही शुरू होती है।
1: चलते चलते एक सुंदर बात, मुश्किलें राह दिखाएंगी, गलतियां इतिहास बनाएंगी। बस खुली रखो अपनी आंखें, तुम्हारी सोच ही नया सवेरा लाएगी। हंसते रहिए, खोजते रहिए और सुनते रहिए
0: रोचक जानकारियां।
2: बच्चे अभी सुन रहे थे रोचक जानकारियाँ, जिसे बता रहे थे विनय श्रीवास्तव भैया और रोशनी बंसल दीदी। और रितेंद्रा दीदी, अब हम लोग एक खास बात करने वाले हैं, आज एक खास दिन की।
3: बिल्कुल, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो बच्चों, अपने कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसी अनमोल विरासत के बारे में, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी वजह से हम स्वस्थ शरीर, शांत मन और खुशहाल जीवन जीने का संदेश देते हैं, है ना?
2: यानी बच्चों, दीदी हमारी हमें आज इस खास दिन के बारे में बता रही है, और वो खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
3: तो बच्चों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में इतना समय बिताते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी देना भूल जाते हैं ना। तो ऐसे में योग हमें स्वस्थ रहने का सरल और प्राकृतिक तरीका सिखाता है। योग केवल शरीर को मोड़ने या व्यायाम करने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा को संतुलित रखने की एक कला है ना?
2: तो बच्चों, आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें, हम रोज पौष्टिक भोजन खाएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे।
3: बिल्कुल।
2: और दीदी, मैं सोच रही हूँ कि योग पर हम अभी और बातें करेंगे, लेकिन हमारे बीच कुछ बच्चे आके बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये दीदी हमें कब अपने दोस्तों से मिलवाएंगी, बातें कराएंगी। तो भाई, पहले हम बुलाते हैं अपने स्टूडियो में। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम श्रेयांश है।
2: अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं श्रेयांश साहब?
4: मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ।
2: तो अच्छा, ये बताइए, आज हमें क्या सुनाने वाले हैं आप?
4: मैं कविता सुनाने वाला हूँ योग दिवस पर।
2: अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, योग पे आप कविता लिख कर लाए हैं, लेकिन क्या आप खुद योग करते हैं?
4: मैं स्कूल जाने से पहले सुबह 5 योग करता हूँ।
2: अरे वाह, ये तो देखो बच्चों, कितनी
3: सुन लीजिए,
2: अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल। तो सुनाइए।
4: तन मन की शुद्धि का पर्व योग दिवस है खास, संतुलित जीवन की राह योग का अनुपम प्रकाश। योग से मिलता है हमें शांति और सुकून, तनाव मिटा देता है यह जीवन का जुनून। आसन और प्राणायाम से मिलती ऊर्जा नई, हर दिन नई उमंग से जीवन में रंग भरती सही। एकता और शांति का संदेश योग हमें सिखाता, विश्व को जोड़ने का संकल्प योग दिवस मनाता। आओ मिलकर प्रण ले योग को अपनाएं हम, स्वस्थ समृद्ध संतुलित जीवन हर दिन मनाएं हम। योग से ही जीवन में सच्ची खुशी पाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम सब मिलकर मनाएं।
3: अरे वाह भाई, एक ताली हो जाए इनको, बहुत बढ़िया पढ़ा श्रेयांश ने, है ना?
2: और दीदी, एक दूसरा बच्चा भी लाइन में है, पूछते हैं आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम अनुष्का है।
2: अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप?
5: मैं 9th में पढ़ती हूँ।
2: तो चलिए, आप क्या सुनाने वाली हैं?
5: मैं रोचक

0: तथ्य बताने वाली हूँ योग दिवस पर।
1: अच्छा सुनाइए।
0: अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन को योग दिवस के लिए चुना गया है। योग की शुरुआत भारत में लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलन रखने का एक विधि है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मान्यता दी थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग करने से तनाव और चिंता कम होती है तथा मानसिक शांति मिलती है। योग कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक माना जाता है, जैसे मोटापा आदि। भारत को योग की जन्मभूमि माना जाता है। योग विश्व के सैकड़ों देशों में लोकप्रिय हो चुका है और लाखों लोग इसका अभ्यास करते हैं। योगा करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। योगा मनुष्य को प्रकृति के करीब लाता है। योगा हमें अनुशासन और संतुलित रहने का पाठ सिखाता है। योग करने से मन को प्रसन्नता और उत्साह बना रहता है। योग स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। करो योगा, रहो निरोग।
1: बहुत अच्छा।
2: और
1: दीदी मैं ये कहूंगी अपने बच्चों से कि भाई आप लोग भी नियमित योग करें, क्योंकि बच्चों पढ़ाई में ध्यान आपका तभी लगेगा जब आपका जो शरीर है वो बीमारियों से दूर रहेगा, और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भाई योग से ही मिलती है, और हमारा मन शांत होता है और हम चिंता मुक्त होते हैं। योग से अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास मिलता है, नींद अच्छी आती है और हमारा शरीर जो है वो तरोताजा होता है। तो दीदी बच्चों को कुछ आसन योगासन हम बताते हैं जो वो करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला आसन है ताड़ासन, जो शरीर को सीधा और संतुलित रखने में मदद करता है। दूसरा वृक्षासन है, यह आसन एक पैर पर खड़े होकर किया जाता है, इससे संतुलन और ध्यान बढ़ता है। और तीसरा आसन है तितली आसन, वो बहुत आसान है, पैरों और कमर को ये लचीला बनाता है। भुजंग आसन है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। वृक्षासन है, आपका पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। तो भाई बच्चों से हम दीदी यही कहेंगे कि बच्चों स्वस्थ रहना है तो आसन आप 5 से 10 मिनट ही करिए, लेकिन रोज करिए।
2: बिल्कुल। और अनीता दीदी भाई, हमारे बीच में एक और भी नन्हे साथी बैठे हैं, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठे हैं और योग पे ही कुछ सुनाएंगे। अच्छा। तो उनसे मुखातिब होते हैं।
1: तो पहले पूछते हैं उनका नाम।
3: आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम सात्विक सिंह है। मैं आज, जैसा कि 21 जून है, तो मैं आप सबके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
2: अच्छा, भजन उसके बगल में संगत पे बैठे हैं तबला में, आप अपना भी परिचय दे दें।
4: मेरा नाम है सुंदरम कुमार।
2: अच्छा। ये हैं सुंदरम जी, तो आप क्या सुनाने जा रहे हैं सात्विक?
3: एक योग दिवस पे गीत
2: सुनाइए।

0: भाई तालियां बजाओ सात्विक के लिए, इतना बढ़िया। मतलब योग को म्यूजिक में भी सुकून दे रहा है ना।
1: बिल्कुल।
0: योग कला इसको कहते हैं।
2: और भाई देखिए दीदी, बच्चों का भी मन कर रहा होगा और सुनने का,
0: बिल्कुल,
2: और मेरा भी बहुत कर रहा है। तो सात्विक आप रुकिए नहीं, कुछ और भी सुनाइए।
1: अब मैं आप सबके समक्ष एक वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, गणपति वंदना।

0: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा भाई।
1: दीदी मैं मतलब सात्विक गा रहे थे और सुंदरम बजा रहे थे, तो मैं दोनों बच्चों को देख रही थी, मतलब कितनी मेहनत कितनी एनर्जी लगती है उसके
0: बिल्कुल
1: लिए। तो मैं सात्विक से, मेरे मन में सवाल है सात्विक, ये बताइए आप लगातार जैसे गाते हैं तो क्या थक भी जाते हैं?
2: थकता तो हूँ लेकिन अब जब जैसे आज अभ्यास किया,
1: हाँ,
2: फिर अगले दिन किया तो तीसरे दिन से आदत हो जाती है।
1: अच्छा, जैसे अभी एक आपने गाया योग पर, फिर अभी एक भजन गाया, तो लगातार गाया, तो क्या कुछ दिक्कतें हुई कि रुकना है बीच में?
2: नहीं नहीं
1: ऐसा तो नहीं, नहीं,
0: क्योंकि उसके लिए रियाज करते होंगे, है ना?
2: हाँ।
0: और वो योग जो विद्या है, हाँ, वो कहीं ना कहीं साधना से जुड़ी हुई है।
1: अच्छा अच्छा, मैं सुंदरम से पूछूंगी कि जब बेटा आप बजाते हो तो ये उंगलियां क्या दर्द होती है? क्योंकि हाथ वो कंटिन्यू नहीं चलता है, ये जो कंधे हैं, क्या कुछ दिक्कत होता है?
3: हाँ, थोड़ा सा शोल्डर दर्द होता है।
1: अच्छा,
3: उसको ढीला करना पड़ता है।
1: लेकिन कभी दर्द होता है तो उसको कुछ मतलब आराम की जरूरत होती है, तो आप आराम भी करते होंगे ना?
3: हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते हैं।
0: अच्छा, रियाज करते होगे तबले पे, वो क्या टाइमिंग होती है, सुबह की या शाम की?
3: नहीं, रियाज तो सुबह शाम दोनों की है।
0: दोनों की करते हैं,
3: दो दो तीन तीन घंटे, मतलब जैसे भी टाइम,
0: दो दो तीन तीन घंटे कंटिन्यू।
3: कंटिन्यू
0: वास्तव में ये कला विधा जो है साधना की ही कला है, है ना? तो गायकी में हम सात्विक से भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि गायकी करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मन होता है खाने का और गायकी की वजह से नहीं खा पाते होगे, या सोचते हो कि खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ करते हो?
2: हाँ, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या फिर ठंडा पानी।
0: अच्छा, उसको अवॉइड करते हो।
2: हाँ।
1: लेकिन दीदी बच्चे तो चुपके से खाते हैं लेकिन मैं सात्विक से पूछूंगी कि मतलब योग करते हैं तो उस पर भी कंट्रोल होता होगा कि नहीं मुझे नहीं खाना है?
2: नहीं, हमारे स्कूल में एक मेडिटेशन कराया जाता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसमें हम लोग के स्कूल में रोज सुबह 10 मिनट उसका रूटीन है, पूरा शेड्यूल है। हम लोग प्राणायाम भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं।
0: और अच्छा, मुझे लगता है कि इसको, इसके अंदर एक मतलब म्यूजिक का एक जुनून है, और कुछ करना चाहते हैं तो उस चीज़ों को फॉलो भी करते होंगे ना, कि हमें अगर आगे बढ़ना है कुछ करना है तो
1: उस चीज़ को, आइसक्रीम अगर बहुत फेवरेट है तो उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछूंगी, तो ये आइसक्रीम तो भाई ठंडा है, वो गले को ख़राब करता है, लेकिन हमारे शरीर को ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि फल ज़रूर खाना चाहिए, सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए, है ना? तो क्या आप वो खाते हैं?
2: हाँ, फल खाते हैं और सब्जी भी खा लेते हैं, मम्मी जो बनाती हैं घर पे, पालक हो गया और जितने भी अच्छे सब्जियां होती हैं।

0: हरी सब्जियाँ वो सब खाते हैं।
1: नहीं मम्मी तो वो लौकी भी बनाती है।
0: हाँ लौकी भी पसंद है।
2: अच्छा, ये पसंद ये एक अनोखा बच्चा है क्योंकि
1: जो सब खा लेता है।
2: क्योंकि होता क्या है कि जब साग सब्जी से बच्चे भागते हैं।
1: हाँ,
2: अभी ये दोनों जो छोटे बैठे हैं ये सब भागते हैं सब
1: हरी सब्जी। मैं अपने घर की बात बताती हूँ। अगर मेरे घर में लौकी आता है तो मैं सोचती हूँ कि लौकी तो बनाऊंगी फिर इन लोग क्या खाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो सोचने लगता है कि सोच में होता है कि भाई कुछ ऐसा बनाए जो बच्चे भी खाएं। मैं तो क्या करती लौकी का हलवा ही बना देती भाई खाओ।
2: बिल्कुल, तो सात्विक को हम लोग भी बातचीत के दौरान थोड़ा सा आराम भी मिल गया होगा।
1: हाँ।
2: तो सात्विक हम क्या सुनाओगे?
0: एक और भजन है
2: सुनाओ।

0: बहुत बढ़िया,
1: बहुत अच्छा। और दीदी हमारे पास है अब शब्द ज्ञान। शब्द है हिंदी के प्रत्यंचा, शब्द का अर्थ है धनुष की डोरी या धनुष का तार। जैसे धनुष के दोनों सिरों को जोड़ने वाली डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं। और आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है एस्थेटिक, शब्द का अर्थ है सुंदरता, कला और आकर्षण से जुड़ा हुआ। जैसे किसी भी कमरे की डिज़ाइन को सौंदर्यपूर्ण या आकर्षक कह सकते हैं हम। और दीदी अब
2: अपने कार्यक्रम का समय भी हो रहा है,
0: इतना उदास होकर क्यों बोल रही है?
2: क्योंकि इसकी जो सात्विक जो म्यूजिक बजा रहा था ना, तो मैं उसी दुनिया में चली गई थी। तो अपने कार्यक्रम का समय है, समाप्त हो रहा है, तो बच्चों से
0: कहते हैं बच्चों जय हिंद।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर

0: सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agraya in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today, India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
0: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace.
0: 2014 tak desh ka kul defense production 40,000 crore rupiye ke aas paas tha, aaj yeh badhkar lagbhag 1,80,000 crore rupiye tak pahunch gaya hai. और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
3: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑल्सो सेड दैट द ट्राई कमीशनिंग ऑफ द 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स इज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन इंडियाज मैरिटाइम कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। द 12th

0: nic.in. The admit card for the 3rd of May exam shall not be valid for entry today. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has urged the students to take the exam without fear and wish them the very best. Talking to media in New Delhi, the Education Minister assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the exam. Union Home Minister Amit Shah paid tribute to Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS founder Dr. Keshav Baliram Hedgewar on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah remembered Dr. Hedgewar for establishing the Sangh and spreading the ethos of nation first and cultural nationalism among the people. In cricket, India A were 221 for 3 in 28 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: Akashwani ka ye Prayagraj Kendra hai. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध लेकर के आएंगे दिन में 1:15 पर। 2:30 पर सुनिएगा लोकगीत गायक कलाकार सूर्य प्रकाश पटेल और साथी प्रीति मिश्रा और नन्हेलाल बिंद और साथी। शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे नीरज कुमार तिवारी से बाल कविताएं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे योग एक्सपर्ट अरुणेश से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत युवाओं के लिए महत्वपूर्ण आसन। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आशीष कुमार जिनकी उम्र है 22 वर्ष कद 5'6", रंग गेहुआ, इकहरा बदन चेहरा गोल है। ये दिनांक 15 मई 2026 से ग्राम बेहनपुरवा जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें शशि प्रकाश चौधरी से जिनका मोबाइल नंबर है 9289858895। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9289858895। अंशुमन जिनकी उम्र है 23 वर्ष कद 5'6", रंग गोरा, चेहरा पतला है। ये दिनांक 20 मई 2026 से ग्राम सोंधिया जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क कर सकते हैं शिव मूरत से जिनका मोबाइल नंबर है 9919277592। नंबर आपको एक बार फिर से बताई देते हैं 9919277592। गरिमा देवी जिनकी उम्र है 23 वर्ष कद 5'4", इकहरा बदन चेहरा गोल है। ये दिनांक 10 मई 2026 से शीतला धाम थाना कड़ाधाम जनपद कौशाम्बी से

लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें सुरेश कुमार से, जिनका मोबाइल नंबर है 9936192903। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9936192903। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। पहले सुनिए शहनाई पर बजाया राग वृंदावनी सारंग।

अभी आपने सुना उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग वृंदावनी सारंग, और अब आपको सुनवाते हैं शहनाई पर बजाया राग भीम पलासी, कलाकार उस्ताद बिस्मिल्ला खां।

अभी आपने सुना उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग भीम पलासी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत में हम बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, फादर्स डे की और विश्व संगीत दिवस की। साथ ही सुनवाएंगे आपको खूबसूरत खूबसूरत से गाने। आज पूरी दुनिया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। श्रोताओं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की वो अमूल्य धरोहर है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोती है। योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर आज के इस पल को पूरी सजगता से जीना ही योग का सार है। योग जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने की हमें प्रेरणा देता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, हर परिस्थिति में मन को शांत रखना ही योग का संदेश है। नियमित योग और ध्यान हमें मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है तो जीवन की चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म ये जवानी है दीवानी से। गीत है मोहित चौहान का, आवाज मोहित चौहान की है, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

श्रोताओं, योग हमें निरंतर अभ्यास का महत्व बताता है। नियमित अभ्यास से ही सफलता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर हमें श्रोताओं उम्मीद है कि आप अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, योग केवल एक आसन नहीं बल्कि बेहतर जीवन जीने की कला का नाम ही योग है। अब सुनवाते हैं श्रोताओं आपको कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आजा नचले से। गायक कलाकार राहत फतेह अली खान, गीत है जयदीप साहनी का और इसे सुरों में पिरोया है सलीम सुलेमान ने।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जो पिता के स्नेह, त्याग, मार्गदर्शन और अनमोल रिश्ते को सलाम करता है। पिता हमारे जीवन की, श्रोताओं, वो छाया है जो हर कठिन राह में हमारा संबल बनती है। पिता के मौन संघर्ष और अथक परिश्रम को शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। पिता की सीख, उनका अनुशासन और उनका त्याग हमारे जीवन को दिशा देता है। अपने बच्चों के प्रति पिता के अथाह प्रेम और उम्मीद को व्यक्त करता वो गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म एनिमल से।

गायक कलाकार हैं सोनू निगम, गीत है राजशेखर का और इसे सुरों से सजाया है हर्षवर्धन नागेश्वर ने।

पिता जीवन की वो छांव है जो हर मुश्किल में हमें सुरक्षा और हौसला देती है। पिता का त्याग और उनका स्नेह का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन सम्मान और प्रेम के कुछ शब्द पिता के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला सकते हैं। अपने पिता के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करने का कोई अवसर हमें नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि उनका स्नेह और मार्गदर्शन हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।

श्रोताओं, आज है 21 जून और आज के दिन को हम मनाते हैं विश्व संगीत दिवस के रूप में भी। संगीत का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। संगीत हमें तनाव से राहत दिलाता है, एकाग्रता बढ़ाता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। संगीत की इन्हीं खूबियों की वजह से हम मनाते हैं विश्व संगीत दिवस। आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म संगीत से। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की। गीत संतोष आनंद का है और संगीत है नरेश शर्मा का।

संगीत सिर्फ सात सुरों में ही बधा नहीं होता, इसे बांधने के लिए विश्व की सीमाएं भी कम बढ़ जाती हैं। संगीत दुनिया में हर मर्ज की दवा है, संगीत दुनिया में हर जगह है। अगर इसे हम महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है। कोयल की कूक, पानी की कलकल, हवा की सरसराहट, हर जगह संगीत ही तो है। बस ज़रूरत है तो इसे महसूस करने की। बस अपनी ज़िंदगी के व्यस्त समय से कुछ पल सुकून के निकालिए और महसूस कीजिए इस संगीतमयी दुनिया को।

उदित नारायण और अलका याग्निक को आपने सुना मन फिल्म में। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी

0: उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
2: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Addressing the event, the president said, yoga is a celebration of India's great tradition. She said yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. The National Testing Agency, NTA, has issued guidance.

0: Guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA said entry to the examination centres will close at 1:30 in the afternoon. It has asked the students to carry their admit cards and valid photo ID. The admit cards for the exam can be downloaded from the website neet.nta.nic.in. Talking to media in New Delhi, Union Education Minister Dharmendra Pradhan assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the exam. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF, will draw to a close today. The biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15th June and will conclude tonight with a grand closing ceremony. One of the key attractions on the final day of MIFF will be the screening of V. Shantaram, The Pioneering Spirit, marking the 125th birth anniversary year of the legendary filmmaker. U.S. Vice President J.D. Vance has arrived in Switzerland. Mr. Vance earlier said the United States will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation from Tehran is also on the ground and has warned that talks won't advance without first addressing Lebanon. Hours after Tehran said it closed the Strait of Hormuz because of Israel's attacks in Lebanon, and warned that little might be achieved if the fighting doesn't stop, U.S. President Donald Trump, in response, unleashed a new threat to impose American controls in the crucial waterway. In cricket, India A were 291 for 6 wickets in 42 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से योगा का 12वां आलमी दिन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है उम्र बढ़ने के असरात का मुकाबला करने के लिए योगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योगा डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरकजी तकरीब आज मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के रेड रोड पर हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब में योगा प्रैक्टिस की क्यादत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा पूरी दुनिया को जोड़ने का एक अहम जरिया है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगा को जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया बताया। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बैन अल-अक़वामी योगा दिन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज खुसूसी योगा प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असम्बली के स्पीकर, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और तमाम रियासती वज़रा और इंतजामी अहदेदारों ने मुख्तलिफ़ अज़ला में मुनक़िद योगा सेशन में हिस्सा लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी के फोर्ट ग्राउंड में योगा सेशन की क़यादत की। योगा की मश्क करके सेहतमंद रहने का पैगाम देते हुए वजीर आला ने रियासत के लोगों को बैन अल-अक़वामी योगा दिन पर मुबारकबाद दी।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
1: नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के त्रिवेणी में

0: गमनोज में शिरकत की, जबकि ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के दी रेजिडेंसी पार्क में शिरकत की। इसी तरह फर्रुखाबाद, मेरठ, श्रावस्ती, अयोध्या, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, कुशीनगर, चंदौली, मऊ समेत मुख्तलिफ अजला में रियासती हुकूमत के वुजरा और अवामी नुमाइंदों ने योगा डे के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। योगा डे के मौके पर स्कूलों में ग्रुप योगा मशकें और आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जहाँ तलबा को योगा के जिस्मानी और रूहानी फवायद से आगाह किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ दो रोजा दौरे पर महोबा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महोबा को 697 करोड़ रुपए के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। कबल अज वजीर आला गोरखपुर गिरी पहाड़ के दामन में वाक सिद्ध बाबा धाम पहुंचे, जो गुरु गोरखनाथ की तपस्या की जगह है, और वहां पूजा की। वजीर आला शहर के मोदी मैदान में मुनद जलसयाम से खिताब कर रहे हैं। इसके बाद श्री योगी महोबा से हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के लिए रवाना होंगे, जहां वजीर आला 636 करोड़ रुपए से ज्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 221 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें ललितपुर में 1766 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस मौके पर एक आवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बुंदेलखंड तरक्की का नमूना बन रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में हर घर तक नल स्कीम को नाफिज किया जा रहा है, पीने का साफ पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आज नीट UG के दोबारा इम्तिहान के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क भर और बैरून मुल्क मुख्तलिफ शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मराकज में दाखिला सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:30 बजे बंद होगा। तुलबा को एक नया एडमिट कार्ड और एक दुरुस्त तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड लाना होगा। 3 मई के इम्तिहान के एडमिट कार्ड आज दुरुस्त नहीं होंगे। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट UG के लिए दोबारा इम्तिहान आज मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून ममालिक के 14 शहरों में मुनक़िद हो रहा है। मेडिकल दाखिला इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक मुनक़िद होगा। इस बार उम्मीदवारों को मजीद 15 मिनट का वक्त दिया गया है। रियासत भर के 59 अजला में नीट का दोबारा इम्तिहान लिया जा रहा है। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन खसूसी गैर महफूज ट्रेनें चला रहा है। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवारों को स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अनिरुद्ध और श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में थोड़ा सा वक्त देना खुद को कितना ज़रूरी है। और योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या कसरत करने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का विज्ञान है। तो चलिए आज के इस खास दिन पर अपनी मैट बिछाइए, लंबी सांस लीजिए और खुद को सेहत और मानसिक शांति का अनमोल तोहफा दीजिए। और यही नहीं, आज है सुरों का त्यौहार भी, यानी विश्व संगीत दिवस। और संगीत तो वो जादुई भाषा है जिसके लिए किसी शब्द की आवश्यकता ही नहीं होती, चाहे वो खुशी के नगमे हों या सुकून देने वाली कोई गज़ल। तो योग करते रहिए और रेडियो भी सुनते रहिए अपने पसंदीदा गानों का कार्यक्रम हेलो अनिरुद्ध। और आज के दिन को सुरमई बनाइए, क्योंकि संगीत के बिना ये जिंदगी है अधूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।
1: मेरा अंत्येष्टि आर्या है।
0: नीतीश आर्या जी। जी

0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म के नाम है बे हजारा गाने बोले हम तेरे लिए थे जिए।
0: पूरा बोल हम आपको बता देते हैं, तेरे लिए हम हैं जिए। रूप
1: बहुत अच्छा
0: कुमार,
1: गाना है।
0: हाँ रूप कुमार राठौर और लता जी की आवाज में बहुत ही सुमधुर गाना नीतीश जी ने चुना है। तो नीतीश जी, आपकी पसंद का वीर ज़ारा फिल्म का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हडिया, तहसील हडिया, थाना हडिया, गांव मगरा, जिला प्रयागराज से आपका जाना पहचाना नियमित श्रोता प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को दिन में 1:15 पर प्रसारित किया जाता है। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: रेखा यादव कुकुरा हरिया प्रयागराज से बोल रही हूँ
0: जी। बताइए रेखा जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैं दोस्ताना फिल्म का।
0: दोस्ताना फिल्म का कौन सा गाना है ये?
1: दिल लगी ने दी, यही करके थोड़ा सा।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: हाँ
0: जी बिल्कुल। ये जीनत अमान और अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया हुआ पुरानी दोस्ताना फिल्म का गाना है।
1: यस मैम।
0: तो चलिए रेखा जी, आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाएं गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: गांव दौदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी शारदा प्रसाद प्रजापति शिवराधा सिटी मथुरा से ब्रज रेडियो श्रोता मित्र आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है मासूम।
0: जी
1: ये जो तेरी पायलों की छुनमुन है, आशिकों के दिल की धड़कन है, ये गीत सुनना चाहता हूँ। आपके अनुरोध करता हूँ कि आकाशवाणी प्रयागराज से इस गीत को प्रसारित कीजिए।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का मासूम फिल्म का हम ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम नमस्ते, मैं प्रयागराज के मीरापुरी शिवानी यादव बोल रही हूँ और ये फरमाइश मेरे बाबा की है।
0: जी बताइए, फरमाइश कौन सी है?
1: फिल्म उपकार का गाना कसमे वादे प्यार वफा। मैम ये वो जो गाना है,
0: जी जी
1: ये वाला गाना मेरे बाबा की फरमाइश का है।
0: बहुत अच्छा गाना चुना है उन्होंने, इसका मतलब हमारे कार्यक्रमों को वो बहुत सुनते भी हैं।
1: हाँ
0: तो शिवानी जी, उनकी पसंद के इस गाने को हम सुनवाने जा रहे हैं, आप भी सुनिए।
1: यस मैम।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को दिन में 1:15 पर प्रसारित किया जाता है। अब देखते हैं हमारे साथ कौन से कॉलर हैं। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: पवन निषाद, नेवी क्लब बनपुकरा से।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मुस्कान फिल्म का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिस दिन तेरी
0: मेरी बात नहीं होती, यही गाना है। अच्छा पवन जी, किसी का नाम तो नहीं लेना आपने अपने मित्रों का?
1: अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
0: जी जी बताइए।
1: पिंटू है, बोंदू, रोहित, कमल,
0: हो गए नाम आपके। तो आपको सुनवाने जा रहे हैं मुस्कान फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: हमारा गुलाब चंद मिश्रा नाम है, ग्राम पचोखर पोस्ट रामजालगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। दीदी, हम टोटली ब्लाइंड हैं।
0: अच्छा, गुलाब जी, मेरी आपसे शायद पहले भी बात हुई है।
1: हाँ, कई बार बात हुई है दीदी।
0: अच्छा, तो आप फोन मिला लेते हैं ठीक से या किसी से मिल?
1: नहीं, एक मोबाइल बोलता है।
0: अच्छा, तो मतलब आप बोल के डायल करते हैं?
1: हाँ, डायल करते हैं। जैसे हम आपका केवल एक नंबर नोट किए, जो पहला नंबर है वही नोट किए हैं, तो आकाशवाणी एक के नाम से मतलब उसके लोड किए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जब बटन दबाते हैं तो आकाशवाणी एक बताती है।
0: अच्छा, तो वो नंबर ऑटोमेटिक मिल जाता है। अच्छा जी,
1: हाँ,
0: जी
1: वो मिल जाता है, बस यही तरीका।
0: लेकिन देखिए, आप कितना दिल से प्रयास करते हैं कि आपका नंबर हमेशा लग जाता है, वरना कई श्रोताओं की ये शिकायत रहती है कि भाई हमारा नंबर ही नहीं मिल पाता।
1: तो हमेशा दबाते रहते हैं ना,
0: जी जी
1: तो जब चांस मिलता है तो लग
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है।
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हम सूरत पश्चिम का गीत सुनना चाहते हैं, दुल्हन चली बहन

0: host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. US Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
4: योगा केवल हमारी विरासत

0: नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया

0: गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
2: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंद

0: गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवाते हैं सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में लचारी।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं लोकगीत। अब आपको सुनवाते हैं प्रीति मिश्रा के स्वर में झूमर।

नन्हे लाल बिंद और साथियों के गाए इस दादरा के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है, लेकिन FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम युग 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। बाल गोपाल सुनने वाले सभी बच्चों को जय हिंद। आपके साथ हूँ मैं आज रेणुराज दीदी। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तो छुट्टियां आपकी चल रही हैं, गर्मी की छुट्टियां। तो अब गर्मी की छुट्टियां तो धीरे धीरे समाप्त होने तक हैं। कुछ बच्चों के स्कूल 25 जून तक खुल रहे हैं और कुछ बच्चों के स्कूल जुलाई पहले हफ्ते में खुल जाएंगे। तो अब तक तो आप कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर गए होंगे मम्मी पापा के साथ। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसमें हम ढेर सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे जीवन में हमारे उपयोग में आते हैं। तो गर्मी आज हम इसी विषय पर बातचीत आपसे करेंगे कि आपने अपनी गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं वो कैसे बिताई। कुछ बच्चे ज़रूर इन गर्मी की छुट्टियों

0: में कुछ हॉबी क्लासेस कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, आपने कुछ चित्रकारी की क्लास ज्वाइन किया होगा, डांस क्लासेस ज्वाइन किया होगा, कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स में भी कुछ किया होगा, कुछ या तो स्विमिंग क्लास आपने ज्वाइन किया होगा या किसी खेल कूद में आप गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी भी 10-15 दिन बाकी हैं आपकी छुट्टियां ख़त्म होने पे। अगर आपने कुछ ऐसा ना किया हो तो इन छुट्टियों को सिर्फ घूमने में ही या टाइम पास करने में ही ना आप गंवाएं, बल्कि कुछ अच्छे काम, कुछ ऐसे काम जो आपके जीवन में आगे काम आ सकें, ऐसे काम ज़रूर करें। अब क्या क्या आप कर सकते हो, जैसे सबसे ज़रूरी तो है कि आपको कुछ हॉलीडे होमवर्क्स मिला होगा, तो जो भी आपको इस तरह के गृह कार्य मिले आपने किए हैं कि नहीं किए। ऐसा तो नहीं कि आपने अभी तक खेलने कूदने में और मस्ती करने में ही सारी छुट्टियां बिता दी हों। तो आप अपना जो गृह कार्य है, जो आपको छुट्टियों के लिए जो गृह कार्य मिला है, वो आप पहले वो सारे कार्य आप कर लीजिए, कि नहीं तो फिर स्कूल खुलेगा और फिर आप अपनी नोटबुक नहीं दिखाओगे तो फिर डांट भी पड़ेगी स्कूल में। तो सबसे पहले तो वो काम कर लो, और उसके बाद अगर आप घूमने टहलने कहीं गए हों तो जो भी आप देख कर आए हैं उसके बारे में आप ज़रूर लिखें, यानी कि उसके संस्मरण को लिखें। तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ विषयों पर निबंध आते हैं लिखने को, कि आपकी गर्मी की छुट्टियां कैसी रहीं। तो जब आप इन विषयों पर निबंध, या आपकी परीक्षा में अगर मान लीजिए इन विषयों पर निबंध आ जाता है, तो आपको लिखने में आसानी होगी क्योंकि पहले से आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो जहाँ भी आप घूमने गए हो तो आप वहाँ के बारे में एक निबंध ज़रूर लिखिएगा, याद करिएगा कि कैसे कैसे आपने यात्रा की और फिर वहाँ जाके आपने क्या क्या देखा, उन सारी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल विस्तार से लिखिएगा। 300-400 शब्दों में आप निबंध लिखिएगा, और ये निबंध आपके लिए बहुत काम आएंगे जब आप परीक्षा देंगे और इस विषय पे अगर निबंध लिखने को आ गया, और इससे आपकी लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ऐसे ही कुछ काम आप इन छुट्टियों में कर सकते हैं। तो आइए अभी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज जो है इस कार्यक्रम में नीरज कुमार तिवारी भैया की कविताएं हैं, जो कि बाल कविताएं हैं, तो आइए सुनते हैं।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है चंदा मामा। चंदा मामा, चंदा मामा, रच के निये रे औ ब्याका। चंदा मामा, चंदा मामा,

तरह के लुक्का छिप्पी, एही तरह के लुक्का छिप्पी, कबहूँ हमा सिखौबे का बात तोहरे देशवा में, तनिकौ हमा देखौबे का। चंदा मामा, चंदा मामा।

0: देखो ब्याह का।
1: मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें ने देखो ऐसी मधुर है तान बजाई, चू चू करती फुर फुर उड़ती चिड़ियों ने भी गीत सुनाई। सूरज की किरणों ने देखो ऐसी मधुर है तान बजाई, चू चू करती फुर फुर उड़ती चिड़ियों ने भी गीत सुनाई। हुआ सवेरा कोयल कूके भौरों ने फिर राग सुनाई, हुआ सवेरा कोयल कूके भौरों ने फिर राग सुनाई। ठहरो देखो पवनों ने फिर मंद मंद शीतलता लाई, ठहरो देखो पवनों ने फिर मंद मंद शीतलता लाई। सूरज की किरणों ने देखो ऐसी मधुर है तान बजाई, चहक उठे हैं

0: सारे प्राणी महक उठी है डाली डाली, चहक उठे हैं सारे प्राणी, महक उठे हैं डाली डाली, पग पग पर है धूल उड़े, ओस की बूंदे न्यारी न्यारी, झूम उठी है फिर से देखो सरसों की क्यारी मतवाली, झूम उठी है फिर से देखो सरसों की क्यारी मतवाली, आंगन आंगन फिर से गूंजे नन्हों की मिसरी तानी, आंगन आंगन फिर से गूंजे नन्हों ने है तान लगाई, सूरज की किरणों ने देखो ऐसी मधुर है तान बजाई।
1: तो बच्चों अभी आप सुन रहे थे भैया नीरज कुमार तिवारी से उनकी बाल कविताएं। कैसी लगी? ज़रूर आपको अच्छी लगी होंगी। देखिए चंदा मामा पर भी एक कविता थी। और तो अभी हम क्या बातें कर रहे थे? हम बातें कर रहे थे कि हम अपनी जो गर्मी की छुट्टियां हैं उनका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी, चूंकि आधी गर्मी की छुट्टियां लगभग बाकी ही हैं, तो आप कैसे कर सकते हो, कुछ नए स्किल्स सीख सकते हो? जैसे अगर आपको ड्राइंग का शौक़ है, आपको डांसिंग का शौक़ है, आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है ना, तो इस तरह के जो भी आपको शौक़ है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, उनकी क्लासेस ज्वाइन करके आप वो सीख सकते हो। और उसके अलावा देखो, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, इन सब चीज़ों में भी आप अपने हाथ आज़मा सकते हो। क्योंकि अभी तो आपके पास इतना सारा समय होगा, आपको ना जागने की चिंता ना सोने का डर, तो है ना, समय ही समय है, चारों तरफ समय ही समय है। और उस समय को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है। उसके साथ ही साथ अपनी आप शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान दे सकते हो, यानी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, है ना, जैसा कि अभी हम बातें कर रहे थे। और सबसे जो ज़रूरी है बच्चों, गर्मी की छुट्टियाँ एक बात के लिए बड़ी उपयोगी होती हैं कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो। जब से ये मोबाइल का चलन शुरू हुआ है, आप किताबों से बहुत दूर हो गए हो, यानी कि आप कोर्स की किताबों के अलावा आप कुछ पढ़ते ही नहीं हो। तो इन गर्मियों की छुट्टियों का उपयोग आप अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए भी कर सकते हो। तो अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो किताबें ले आइए, बहुत सारे विषयों पर किताबें, बहुत सारे लेखकों की किताबें, कुछ नॉवेल्स हो इंग्लिश में पढ़नी हो, अगर आपको शौक़ है हिंदी पढ़ने का तो हिंदी के बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, उन किताबों को पढ़िए आप। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़िए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो किताब पढ़ने का जो शौक़ है, पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है, वो भी आप इन छुट्टियों में अपना पूरा कर सकते हो। तो अब देखो बच्चों, हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गया, बल्कि समापन की ओर जा रहा है। तो हम फिर से आपसे मिलेंगे और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करेंगे और कुछ उपयोगी चीज़ें आपके लिए लाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद। अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: बकायदा स्टूडियो क्लॉक मॉर्निंग के बच इवनिंग के बज चुके हैं 5:15 एंड आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना यूथ प्रोग्राम युवाणी, जहां मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट साक्षी
1: और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र, क्योंकि आज है एक ख़ास दिवस जिसे हम अकेले नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक साथ सेलिब्रेट करती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन भारतीय परंपरा की जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाया है।
0: और आज का हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा एक खास टॉपिक के साथ, क्योंकि दोस्तों आज है 21 जून और जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी वर्ल्ड योगा डे।
1: और आज हम जानेंगे योग के महत्व को और जानेंगे कि आखिर योग को दुनिया भर में इतनी पहचान क्यों मिली। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना साक्षी कि हम अपने काम में, अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं।
0: बिल्कुल अभिषेक, और कभी पढ़ाई का तनाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी मोबाइल की दुनिया में हम घंटों खो जाते हैं कि अपने ज़रूरी काम को भूल जाते हैं। और ऐसे में योग हमें सिखाता है कि कैसे कुछ मिनट खुद के लिए निकाल कर हम अपने शरीर और मन दोनों को बैलेंस्ड रख सकते हैं।
1: अक्सर लोग योग को सिर्फ व्यायाम समझ लेते हैं, लेकिन योग का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। योग शब्द संस्कृत के युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ना और अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करना।
0: दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वर्ष 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिली और पहला योग दिवस 21 जून 2014 को मनाया गया।
1: और हेक्टिक शेड्यूल, साथ ही टेंस्ड लाइफ में लोगों को काफ़ी मेंटल इश्यूज और नींद की कमी, ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स साक्षी फेस करनी पड़ती है ना, जिसकी वजह से कई बार ध्यान भी भटकने लगता है।
0: तो दोस्तों, ऐसे में रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट का योग और प्राणायाम करने से हमें अधिक ऊर्जावान, शांत और एकाग्र बना सकता है योग।
1: और साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि योग के लिए किसी महंगे अप्रेटस उपकरण या जिम की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी इच्छा और रेगुलरिटी होनी चाहिए हमारे अंदर।
0: बिल्कुल दोस्तों, और जब हम योग दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो हमें भी पता है कि योग के बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है इसके लाभ। ये हमारे शरीर को, हमारे मन को कैसे लाभदायक, कैसे लाभ देता है। सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ पर, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा करता है। अगर आप रेगुलर योगा अभ्यास करेंगे तो ये आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके मसल्स को मजबूत बनाता है और शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है।
1: दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है कि मानसिक स्वास्थ्य, यानी योग और प्राणायाम तनाव, चिंता और मानसिक दबाव को कम करने में बहुत हद तक मदद करते हैं। इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है।
0: दोस्तों, इसके अलावा योग हमारे एकाग्रता और हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल है। जो स्टूडेंट्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन यूथ्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभिषेक।
1: बिल्कुल साक्षी, और योग हृदय स्वास्थ्य को भी बहुत बेहतर बनाता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करता है, साथ ही डायबिटीज़ और मोटापे यानी ओबेसिटी जैसी जीवन शैली संबंधी समस्याओं से बचाव में बहुत ही सहायक माना जाता है।
0: दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। योग इस बात को वास्तविक रूप देता है।
1: और सही कहा, बिल्कुल ठीक बात है। योग हमें केवल स्वस्थ ही नहीं बनाता दोस्तों, बल्कि आत्मविश्वासी, अनुशासित और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है।
0: तो हम आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि रोज़ केवल 20 से 30 मिनट योग और प्राणायाम के लिए निकालें। ये छोटी सी आदतें हमारे और आपके जीवन में बड़े पॉजिटिव चेंजेस को ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, और इसकी शुरुआत सबसे सरल तरीके से की जा सकती है, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम जैसे अभ्यास बहुत ही मददगार साबित होते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो संदेश है वो भी हमें यही प्रेरणा देता है कि योग को केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: क्योंकि योग केवल शरीर को नहीं बल्कि विचारों, व्यवहार और जीवन दृष्टि को भी स्वस्थ बनाता है।
0: तो दोस्तों, आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि नियमित योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल

0: करेंगे और स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: तो साक्षी, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ज़रूरी बातें थी जो हमने अपने श्रोता साथियों के साथ साझा करी, और मुझे लगता है कि अब वक्त हो चला है एक म्यूज़िकल ब्रेक का। तो आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते चलते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड योगा डे पर, तो आपने भी आज निश्चित तौर पर योगा किया होगा। और हमारा प्रोग्राम सुनने के साथ ही आप ज़रूर अपनी जीवन शैली में योग को अपनाएंगे और योग से कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आइए सुनवाते हैं आपको योग एक्सपर्ट अरुणेश मित्र से भूपेंद्र मिश्र जी की बातचीत, जिसका विषय है युवाओं के लिए महत्वपूर्ण आसन।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं भूपेंद्र मिश्र आज एक विषय

0: इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। युवा हमारे देश की शक्ति होती है, राष्ट्र के निर्माण में उसकी क्या भूमिका होती है ये कतई बताने की जरूरत नहीं है। उसकी दिशा एवं दशा ठीक है तो वो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान देता है, क्योंकि यही युवा शक्ति आगे चलकर अलग अलग कामों में संलिप्त होता है और समाज को एक नई दिशा देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये युवा शक्ति स्वस्थ रहेगी तो किस तरह का योगदान देगी, अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो किस तरह का योगदान देगी? जब बात राष्ट्र निर्माण की हो तो युवाओं को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात पर बल देते हैं कि देश का युवा फिट होना चाहिए, और उन्होंने फिट इंडिया हिट इंडिया जैसे मूवमेंट को भी बढ़ावा दिया है। तो श्रोताओं, आज हम इसी पर बात करेंगे कि हमारे जो युवा हैं वो कैसे फिट रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज 21 जून है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रयागराज के पहले योगा वेलनेस सेंटर में कार्यरत योग प्रशिक्षक अरुणेश मित्र जी। सबसे पहले अरुणेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: अरुणेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि प्रयागराज युवाओं का क्षेत्र रहा है, कंपटीशन का क्षेत्र रहा है, यहाँ दिल्ली के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा छात्र पाए जाते हैं तो मेरा अनुमान है कि यहीं पर पाए जाते हैं, और वो निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं, अपने करियर के, अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक लंबा समय होता है, लंबा गोल होता है, और उसके लिए एक लंबी तैयारी होती है। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दशा में हमारे जो युवा हैं वो किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं, कौन कौन से वे योगा हैं, कौन कौन से वे आसन हैं जिनको उन्हें करना चाहिए, और वे अपने इस तैयारी के दौरान उसे कर सकते हैं।
1: प्रयागराज में काफ़ी प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं अच्छे से, और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्ति डेली प्राणायाम करे। अगर वो 5 से 15 मिनट डेली व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है, चाहे अनुलोम विलोम हुआ आपका, चाहे कपालभाति हुआ, चाहे भ्रामरी प्राणायाम हुआ, इन सब प्राणायामों को अगर 5-5 मिनट भी व्यक्ति कर रहा है तो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और उसका उत्तरोत्तर विकास रहेगा। जैसे याद रखने वाली चीज़ें भी रहती हैं जो भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन अगर प्राणायाम कर रहा है तो वो रिकॉल जल्दी हो जाती हैं। तो आज के समय में जो आधुनिक सोशल मीडिया या जो भी है उससे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी तैयारी से, और मन एकाग्र करने के लिए ये प्राणायाम एकदम रामबाण की तरह काम करता है।
0: आपने प्राणायाम की बात की, जैसा कि ये नाम से ही है कि प्राणों का आयाम, तो एक सामान्य विद्यार्थी प्राणायाम में आपने कई तरीके बताए जैसे अनुलोम विलोम, तो स्टार्ट कैसे करे और फिर वो सावधानियां क्या क्या रखनी है, थोड़ा इस पर आप
1: जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए एकदम कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं आराम से, और आंखें सहज भाव से बंद कर लें। बिल्कुल सहजता से बाईं नासिका से श्वास धारण करना है, दाईं से पुनः त्याग देना है, पुनः दाईं से लेना है, बाईं से त्याग देना है। क्रमागत रूप से इसे करना है। ध्यान रखना है कि जितने समय में आप श्वास धारण कर रहे हैं उतने समय में ही श्वास आपका बाहर आ जाए। तो इस क्रिया को करते वक्त आँखों को सहज भाव से बंद रखें ताकि आपका विचार कहीं अन्यत्र मन न जाए, उस पर ध्यान केंद्रित रहे श्वासों पर। तो ये क्रिया 3 से 5 मिनट करें ताकि इसका लाभ आपको पूर्णतः मिले। उसी तरह अगले प्राणायाम की तरफ अगर हम बढ़ें, कपालभाति प्राणायाम, तो वो भी चूँकि एक्चुअल में वो है तो षटकर्मा, बट चूँकि उसके लाभ को दृष्टिगत करते हुए आज के समय में उसको प्राणायाम के रूप में ही को ले लिए हैं हम लोग, तो कपालभाति भी करेंगे। वो समझ लीजिए कोरोना टाइम में रामबाण हुआ, जिन्होंने कपालभाति 5 से 15 मिनट किया उनकी लंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया रही, और जो याद रखने की बात है वो भी बढ़िया रहती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए 5 मिनट हमें कपालभाति करना है, कमर गर्दन सीधी रख के श्वासों को बाहर त्यागना है, लेने का प्रयास नहीं करना है। हर बाहर जाती हुई श्वास आपको शिथिलता प्रदान करेगी, और अंदर लेना ही नहीं है, पैसिव ब्रीदिंग का काम है। प्रैक्टिकली अगर हम बताएं तो नाक के समीप खोज कीजिए, हम मक्खी बैठी हुई है, हमें उसे उड़ाना है, उसे अंदर इनटेक हवा नहीं लेनी, हर बार बाहर, और कोशिश ये करना है 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, श्वास बाहर, इस क्रिया में भी आंखों को सहजता से बंद करेंगे, श्वास बाहर जाएगी, लेंगे नहीं, वो स्वतः पैसिव ब्रीदिंग हो जाती है और इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है निरंतर।
0: आपने भ्रामरी प्राणायाम की बात की, तो ये जो प्राणायाम है कितना महत्वपूर्ण है?
1: सभी प्राणायामों में अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि भ्रामरी समझ लीजिए आपके ब्रेन

0: के पूरे वायर को जब आप करते हैं तो वाइब्रेशन से ही रक्त प्रवाह ब्रेन में बहुत बेहतर हो जाता है। आंखों को क्लोज करके जब हम इसको करते हैं और कान भी क्लोज कर लेते हैं, उस दौरान जो कंठ से लैरिंग से हमारी ध्वनि उत्प्रेरित होती है वो सीधे ब्रेन को हिट करती है, उससे हमें अत्यंत लाभ होता है। जो भी फ्लूड होता है वो भी पूरी तरह से शांत हो जाता है, चैतन्य मन होता है। आप उसको करने के बाद जैसे आप स्विच ऑफ करके मोबाइल एक बार चालू कीजिए तो नवीनता आती है, उसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम अगर 5 से 15 मिनट आप कर लिए तो आपकी पूरी तरह से नवीनता आ जाएगी मन मस्तिष्क में, और जो कुछ भी आप नया पढ़ेंगे तो पूरे याद रहेगा। तो प्रयास यही करना चाहिए, इसे भी 5 से 15 मिनट करें निरंतर।
1: भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करें स्टूडेंट?
0: भ्रामरी प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी करके पलथी मार के आराम से बैठ जाएं सहज सुखासन में। इसको करने के लिए दोनों हाथों के अंगूठे से कान के छोटे पिन्ना को इस प्रकार प्रेस करना है कि वो क्लोज हो जाएगा पूरी तरह। 3 उंगलियां नाशिका के बगल में आंखों को कवर करते हुए, 1 उंगली माथे पर, श्वास धारण करेंगे, कंठ से म की चैंटिंग करेंगे।

0: इस क्रिया को करते वक्त ध्यान यह रखना है कि हमारी ओपनिंग जो है कान की पूरी तरह से क्लोज रहे, ताकि जो वाइब्रेशन है वो पूरा हिट करे, और आंखों को सहज भाव से बंद रखना है।
1: आपने प्राणायाम की बात की, अब हम बात करते हैं योगासन की।
0: जी।
1: क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक कुर्सी पर बैठता है, एक औसत रूप से देखा जाए तो 3 से 4 घंटे या कभी कभी उससे भी ज़्यादा।
0: जी
1: जब परीक्षाएं नज़दीक होती हैं तो ये समय बढ़ जाता है।
0: जी
1: ऐसे में कौन से वे आसन हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं?
0: विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अगर वो 4 से 6 घंटा लगातार बैठ रहे हैं तो कोशिश करें उसे दो भाग में बांट लें,
1: जी
0: समय शेड्यूल को टी ब्रेक की तरह योगा ब्रेक ले लिया करें। उसमें लाभ इनको ये होगा, इससे स्ट्रेचिंग कर लिया करें हैंड्स की। हैंड्स की स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथों को सामने से इंटरलॉक करके श्वास भरते हुए हैंड्स को स्ट्रेच कर लेना है, फिर पुनः वापस यथास्थिति में नीचे लाएंगे, पुनः श्वास भरते हुए हैंड्स को स्ट्रेच कर लेना है, पुनः डाउन ले आएंगे धीरे से। ऐसे 3 to 5 टाइम इसे हम करेंगे, और इसको हम साइड बेंडिंग के रूप में भी ले सकते हैं स्पाइन के लाभ के लिए। दोनों हाथों को पुनः इंटरलॉक किया सामने से हमने, श्वास भरते हुए हैंड्स हमने ऊपर लिया, फिर साइड बेंडिंग हल्का सा किए बैठे बैठे, फिर पुनः नॉर्मल पोजीशन में आ गए, पुनः हैंड्स डाउन, पुनः हैंड्स हमने श्वास भरते हुए लिए, पुनः साइड बेंडिंग किया हमने, पुनः श्वास भरते हुए नॉर्मल स्थिति, पुनः श्वास छोड़ते हुए यथास्थिति। इसको हम करेंगे। और भी चीज़ें हैं, जैसे सूक्ष्म व्यायाम हुआ, आपको शोल्डर में कसाव बैठे बैठे हो जाता है, तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे, इसको हम चलाएंगे 10 टाइम्स हम इसे क्लॉकवाइज चलाएंगे, बहुत सहजता के साथ। कोशिश ये रहेगी कि एक दिशा में दोनों चलाएं, फिर पुनः 10 टाइम्स करने के बाद पुनः इसको उल्टी दिशा में भी चला देंगे। ये हमारे जॉइंट्स को पूरी तरह से फ्री रखेगा। और भी अच्छा है कि अगर चेयर पर बैठे हैं तो थोड़ा सा स्पाइन को इरेक्ट रखते हुए, सीधा रखते हुए कोशिश करें पेल्विक फ्लोर एकदम नीचे रहे, और उस पर इरेक्ट करके स्पाइन को बैठ जाएं। और फिर क्या करेंगे, साइड बेंडिंग के लिए दायां हाथ बाएं घुटने पर रखेंगे, बायां हाथ ऊपर करेंगे, धीरे से हल्का सा खींचेंगे, फिर पुनः हाथ चेंज करके पुनः दूसरे साइड स्ट्रेच करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इससे आपकी स्पाइन पूरी तरह से लचीली बनी रहेगी और लंबे समय तक आप बैठे रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी।
1: ये तो स्ट्रेचिंग की बात हुई,
0: जी।
1: लेकिन हमने बात की कि वे कौन से आसन हैं जो एक विद्यार्थी अपने जीवन में सहज भाव से अपना सकता है।
0: हाँ, विद्यार्थियों के लिए आजकल के लिए सबसे बढ़िया है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। उसमें काफ़ी चीज़ें, 5-6 आसना एक साथ आ जाते हैं,
1: जी
0: आपका हस्तोत्तानासन आ जाता है, पादहस्तासन आ जाता है, बहुत सिंपल है। हस्तोत्तानासन करने के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेते हुए हैंड्स पीछे ले जाएंगे, सीधे स्ट्रेच करते हुए, पुनः श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। हाथों को पूरा स्पाइन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना रहता है इस क्रिया में, और पादहस्तासन में इसी क्रिया को ऐड कर देते हैं, दोनों हाथ पुनः स्ट्रेच करके जाएंगे और हैंड्स आपके पैर के पंजों की तरफ आएंगे, टच करेंगे उसे, सिंपल है।
1: अगर योगा हम करने जा रहे हैं तो हम, वे कौन सी क्रियाएं हैं उसके पहले जिससे हम करें ताकि

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वॉयलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है।
2: बिल्कुल,
1: तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
2: देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में।
1: जी जी।
2: और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के, वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी राम प्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था एज ए गुरु। फिल्मों में जो वायलिन सिखाने वाले खास लोग थे उनमें रामप्रसाद जी का भी बड़ा योगदान है।
1: जी, जी।
2: और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे। और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीसेस दिए वायलिन के, बहुत सुंदर। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वॉयलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे
1: जी,
2: प्यारेलाल जी। और शुरू में जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग थे, मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब,
1: हाँ,
2: जयदेव साहब, उस

0: उन्होंने कुछ सोलो पीसेस बजाए हैं फिल्मों में, और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है,
1: जी
0: तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं। मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें,
1: मैं ये सोच के उसके दर से
0: एग्जैक्टली वही गीत।

0: हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारे लाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और इसी की बात हो रही थी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस जमाने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ।
0: हाँ।
1: उसी उधेड़बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज टाकीज जो बम्बई में है उसके पीछे लिली कोर्ट में।
0: हाँ।
1: मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ मैं गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में।

0: चटाई बिछाए हुए आज के म्यूजिक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप। वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए
1: जी।
0: एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ, तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना। इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाद साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे
1: जी।
0: तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी होके रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा में चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का। ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
1: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं
0: जी। अवश्य

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई। लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा. फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार. साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता. देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है. देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व

टाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

बचपन के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है।

ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। '71 में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध्य के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलख गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुर, बढ़े चलो। पत्थर जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए बीच में सीने से हटा दो, ये आंधिया अगर बढ़े करे मुकाबला, तुम आग बन

0: के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल।

0: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दानवा।

दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: देश जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार ना करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है। रग रग

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक और जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालूंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा में।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर निहाल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूं और जंप भी कर रही हूं, गा भी रही हूं, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवीलाल, मिस्टर बीलाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: सर मैं आपको मतलब नहीं समझ।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवीलाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को भांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा क्यूमिस पाउडर वाला?
3: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
3: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
3: यस सर।

0: also treat my every customer like my daddy.
1: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो.
2: मछली?
0: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो.
2: अच्छा.
1: और अपने आप को बगुला. जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो.
1: राइट.
3: हम तो कहीं तक कसके पहुंच ले जान लो पावर.
2: चुप सर. वेरी गुड आइडिया. वेरी गुड आइडिया.
1: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो. बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो. फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको.
0: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया. अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर.
3: जाए कैसे मैम साहब?
2: चुप करो सर. Really, you are a brain.
0: Really, sir, you are a genius.
1: Customer, quiet.
0: Oh.
1: Customer, aaya hai.
0: Customer, na kahiye, sir.
4: Wonderful. आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक हर चीज मिलती है.
1: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है. आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए. आइए सर, आइए आइए आइए. खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम. वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर. यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है.
4: वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी. क्या मुझे काफी चैन मिला? हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी. यानी कि सुई से लेके कार तक सर. और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर. आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते. सुनो सुनो, मछली फंस गई.
0: मोटी मछली?
1: जी जी जी जी जी जी. मेरा मतलब है मोटी मछली. मोटी मछली वो आप देखना है सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट.
4: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है. जी हाँ सर, फैट फिश. आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए. चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं. मिस पाउडर वाला?
0: Yes, of course.
1: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं.
0: Sure.
1: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट. ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है. और ये कुत्ता देखिए सर. और ये सर कबूतर. और ये सर, ये देखिए मोटी मछली है.
4: मोटी मछली? ओ आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश.
1: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है. बिल्कुल
2: आप की तरह.
1: सर ये देखिए.
4: आई लाइक इट वेरी वेरी मच.
1: ओ थैंक यू सर, थैंक यू. आपकी चॉइस बेमिसाल है सर. क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
4: मेरा छोटा बच्चा? ओह, ही इज ओनली 5 मंथ्स.
0: ओह गुड,
1: वेरी गुड सर, वेरी गुड. तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे. सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है. ये देखिए लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन. क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
4: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है.
1: ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल. योर चॉइस इज वंडरफुल. सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है.
4: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ. यूँ समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर.
4: Wonderful, wonderful. यानी कि अपने आप चलती जाएगी?
1: हाँ सर. देखिए वो बात यूँ है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे. बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर.
4: Oh, I see, I see.
1: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है. जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं. जी, जी, जी, जी, मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर.
4: Oh, I see. Very good.
1: आइए साहब इस तरफ आइए. जी हाँ, यहाँ पर.

0: देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मिस पाउडर वाला।
1: गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
0: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है, मोटी मछली।
2: मछली,
1: ओके बॉस। सर आप सर हाथ आके देंगे?
2: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
1: यस सर, ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
2: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
1: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
2: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
1: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सब। नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, ये शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
2: लेकिन ये शैम्पू,
1: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
0: ओ मिस पाउडर वाला,
3: बच्चे चुप रहे,
0: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
1: आई एम सॉरी सर।
0: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
2: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं।
2: ओह यस, ओह यस
0: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
2: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
0: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
4: गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
4: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।
2: मुझे आई मीन हर सांस बजाने का शौक है, इट्स माय हॉबी।
4: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर सांस बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
2: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
4: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पहाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने?
2: झुमका गिरा रे पप्पा रे चौक,
4: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
2: आग मटका होई गवा।
1: अखिया मिला के जिया भर मा के चले नहीं जाना,
2: चले नहीं,
1: चले नहीं जाना, चले नहीं जाना।
0: तो चुप रहिए,
2: मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
1: कथकली?
4: लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
0: भैरवी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
4: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है।
2: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, नाउ

0: कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
1: You are right.
2: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
0: कोल्ड ड्रिंक।
2: सुनो
1: इनके लिए मैंगो जूस
2: लाओ।
0: मैंगो जूस, जाओ जल्दी
2: सर। ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
1: मैंगो जूस
2: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, सेब। आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
1: भाई आप मजबूर काटो तो खाना ही पड़ेगा।
2: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
0: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
2: भैरवी लाल आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
0: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
2: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
3: ये सर
1: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
2: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
1: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
3: व्हाट,
2: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
1: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
2: जी, एक पैकेट सुइयों का चाहिए, सुइयों का पैकेट।
1: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
3: अरे लेकनी साहब सुनो तो, चले गए।
4: मोटी मछली। वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। आवाज़ें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
7: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
6: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
7: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता

0: भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की SAM शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को

0: वो 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से, आवाज़ें हर्षदीप कौर और साथियों की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म शहजादा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल आईपी सिंह और श्लोक लाल के, संगीत प्रीतम का।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन

0: इंदौर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
1: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम, तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे का शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this? Please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
4: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब,

0: नहीं ले सकते।
1: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो, मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई, यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने, मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
2: अच्छा।
1: और उस, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई, उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
3: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
1: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
3: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।

0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
1: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज़ हो जाती है या रिलीज़ होके हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूँ, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
2: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
3: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
4: आपने कभी अपने साए को घटते बढ़ते देखा है?
3: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनराज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
5: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
6: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
7: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
1: और शुरू में मैं ये कहूँ कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक ज़िद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी ज़िद थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही ज़िद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
0: खेलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा।

0: वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
1: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के, मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है ये हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
0: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
1: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने, तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का। तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है, वो सफ़र आपको थिएटर इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं, तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बई में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
0: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
1: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठ कर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना, और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई, या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: छाया गीत में आज थे कुछ कम चर्चित संगीतकारों के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

भी आके शोक बिजलिया आपकी अदा चुरा न ले कहीं कदम अकेले।

0: उनके
1: नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से

हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।